0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जानें और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें तो आप तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भी कार्य कर सकते हैं। कितना कार्य? जितना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा अपने कार्य को 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नहीं, जितना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है, ये कहना है सादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
5: सुनो शारदा 90.8
6: FM। हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें स्वास्थ्य के बारे में भी एक बहुत सुंदर बात बताती है। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? स्व में स्थित होना। इसीलिए अगर स्वास्थ्य सही से समझना है तो स्व की परिभाषा को समझना आवश्यक है। भगवत गीता हमें बताती है कि जो हमारा शरीर है ये एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर हम नहीं है, ये केवल एक गाड़ी है और इसके ड्राइवर हम हैं जो कि आत्मा है। अर्थात कि हम स्व से समझ सकते हैं कि स्व हम आत्मा के प्रकार हैं। सो भगवत गीता हमें बताती है स्वास्थ्य की सही परिभाषा। स्वास्थ्य अर्थात स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने के लिए हमें स्व को जानना बहुत आवश्यक है। स्व अर्थात मैं। अब ये मैं क्या है? अगर मैं को शरीर माने तो एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं को मन बुद्धि माने तब भी जीवन के समाप्त होने पे ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर इस स्व को हम आत्मा माने जो कि कभी जिसका नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा सही में स्व है। तो स्व में स्थित होने का अर्थ है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करें। अर्थात कि अपने को जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चेतना पर भी कार्य करें। इससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नाचीज हरदिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। जनाब, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी दिल की बातें मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, तो दिल में दबाकर मत रखिएगा, फटाफट एक छोटा सा कॉल कर मुझे बता सकते हैं अपने हालचाल, शहर के हालचाल, पड़ोसियों के हालचाल। नंबर है वही जाना पहचाना, सुना सुनाया, जो अक्सर बारंबार हम आपको बताते रहते हैं। चलिए एक बार पुनः बता देते 0120406025, अर्थात हिंदी में 120 40 60 205 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं और मेल के माध्यम से मेल जोल बढ़ा सकते हैं। ये तो रही संपर्क सूत्र की बात, यानी कि इसके जरिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्या है खास इसके बारे में, मैं आपको थोड़ा सा इशारा कर देता हूँ। जाहिर सी बात है कि कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अगर आपके पास कुछ हुनर है, उस हुनर को आप आगे लेकर जाना चाहते हैं और अच्छे दोस्त हैं, अच्छे टीचर हैं, तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। ऐसी खास एक टैलेंट मेरे साथ जुड़ने जा रहा है जो कि शारदा यूनिवर्सिटी का है, उसके बारे में बातें करेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। भाई ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको इशारा किया था कि आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कौन है, कहाँ से है, चलिए ज्यादा आपको इंतजार नहीं कराना चाहूंगा, लेकिन बारम्बार मैं आपसे यही बातें शेयर कर रहा होता हूँ, साझा कर रहा होता हूँ कि अगर आपके पास कोई हुनर है, कुछ आप हमसे कहना चाहते हैं, आपके पास एक अच्छी कला है, आपके पास एक अच्छा टैलेंट है, वो चाहे आप सिंगिंग की बात हो, चाहे वो राइटिंग की बात क्यों ना हो, तो ऐसी हमारे रेडियो को सुनकर, हमारी ख्याति को सुनकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं शारदा यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं जिनका नाम है सुमित कुमार। ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और जीएनएम का कोर्स कर रहे हैं शारदा यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है, अच्छा गाते, अच्छे इंसान है। तो चलिए ज्यादा इंतजार नहीं कराते तो बात करते हैं सुमित की। तो सुमित फाइनली सुनो शारदा 90.8 एफएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
0: कैसा फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है?
1: सर आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, नया एक्सपीरियंस है सर।
0: सेम मुझे भी अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके, क्योंकि ये आपके साथ मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है।
1: जी।
0: तो समय सबसे पहले आप मुझे बताएं कि शारदा यूनिवर्सिटी के इस प्रांगण में, ये तो रही बात रेडियो एफएम की, चूंकि आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, और शारदा यूनिवर्सिटी में आना कैसे हुआ, यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ की फैकल्टी कैसी है, कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं उसके बारे में कुछ बताइए, अपने कोर्स के बारे में बताइए, जो उसका मैं नाम देख रहा हूँ जीएनएम कोर्स आप कर रहे हैं, सो प्लीज बताइए।
1: सर सबसे पहले शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में बता देता हूँ। ये तो सर एक अलग ही यूनिवर्सिटी है, मतलब इतने बड़े लेवल पे यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बच्चों को आने का अलग ही क्रेज रहता है। और मेरा जो कोर्स है जीएनएम जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, मैं यहाँ से नर्सिंग कर रहा हूँ, सेकंड ईयर में हूँ। तो यहाँ की जो फैकल्टी मेंबर है बहुत ज्यादा अच्छे हैं, फ्रेंडली नेचर है बिल्कुल, और बहुत सपोर्टिव हैं। जैसे कि मेरी फैकल्टी मैम ने कोई सजेस्ट किया था यहाँ पे आने के लिए।
0: ओह ग्रेट।
1: तो
0: उनका नाम बताइए।
1: सर मेरी मैम माधवी शर्मा मैम है।
0: ओह ग्रेट।
1: यस सर, वो हमें एमएसएन पढ़ाती हैं, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि यहाँ पे जाओ शारदा में। और सर शारदा एक मतलब बच्चों के लिए बहुत सपोर्टिव है, एक प्लेटफॉर्म खुद देता है कि बच्चे आगे निकले यहाँ से जाने के लिए।
0: तो आपको कैसा लग रहा है उन्होंने यहाँ सजेस्ट किया, आपको यहाँ एक मौका मिल गया, हम और आप बात कर पा रहे हैं?
1: सर ये ग्रेट फीलिंग है सर, मेरे लिए बहुत ज्यादा ग्रेट फीलिंग है।
0: ये हमारे लिए भी बहुत एक बड़ा कहते ना कि एक सुखद लम्हा है, इस लम्हे को हम कैद करना चाहते हैं। और जो आपकी बातें वो अपने जो लिसनर्स हैं, जो हमारे श्रोता हैं, उन तक हम बातें पहुंचाएंगे जरूर। सुमित यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा, अगर आपके अंदाज में, क्योंकि आप सिंगिंग करते हैं, आपके बारे में, उस टैलेंट के बारे में जानेंगे जरूर, कोई अगर ब्रेक पर जाना चाहे आपके अंदाज में, तो कोई कैसे ब्रेक पर जाएगा?
1: सर ऐसा ब्रेक के लिए सर मैं ब्रेक के लिए बना ही नहीं हूँ सर।
0: अच्छा, ब्रेक के लिए बना ही नहीं है, मतलब लगातार काम करना चाहते हैं,
1: अभी रुकना ही नहीं चाहते, अभी तो सर स्टार्ट ही नहीं किया। अच्छे से
0: चलिए खैर मैं उस ब्रेक की बात नहीं कर रहा था, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हम लेना चाहते हैं जो कि म्यूजिकल ब्रेक है। सो आप कहीं जाएगा मत, मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे साथ हैं शारदा यूनिवर्सिटी का एक टैलेंट है जो कि बहुत अच्छे सिंगर है सुमित कुमार, उभरते हुए कलाकार है, राइजिंग स्टार इनको हम कह सकते हैं, इनके बारे में जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ और प्रोग्राम का नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें। खास बात यह है कि आज एक शारदा यूनिवर्सिटी का टैलेंट हमारे बीच में है और यही हमारा उद्देश्य है कि शारदा यूनिवर्सिटी का रेडियो स्टेशन आपके लिए है, हम आपके लिए हैं। और अगर आपके पास कोई टैलेंट है, कुछ दिखाना चाहते हैं जमाने को, तो जरूर यहां आप आइए और आपकी बात हम आपके श्रोताओं तक जरूर पहुंचाएंगे। तो सुमित, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया।
0: ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी आपके कॉलेज के एक्सपीरियंस के बारे में, आपके टीचर के बारे में जिन्होंने आपको यहाँ प्रमोट किया कि सुमित आप अच्छा गाते हैं, शारदा यूनिवर्सिटी का अपना एक रेडियो एफएम है, वहां जाकर आप मिलिए। और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं और आपके जो टैलेंट है उसको हम हमारे लिसनर्स तक हम पहुंचाएंगे। थोड़ा कुछ और बताइए अपने बारे में। अगर मैं आपसे कहूं कि डिटेल में मुझे बताइए कि ये जो शौक है, इसके शौक की शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई, किसने आपको गाइड किया?
1: जी सर, तो सर जब मैं स्कूल टाइम में था, 12th क्लास की बातें हैं, तो एक रफ्तार है हमारे जो रैपर हैं, उनका रियल नेम है दिलेन नायर, तो सर मैं उनको सुनता था, तो वहीं से मेरे को थोड़ा मोटिवेशन आया कि हाँ मैं भी ट्राई कर सकता हूँ इस फील्ड में। तो मैंने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले जो मैंने लिखा था वो सर रैप नहीं था, वो एक सॉन्ग था, एक मेन बात जो ये है। तो वहां से मैंने लिखना स्टार्ट किया, वहां से देख के। तो मैंने जब वो एक सॉन्ग कंप्लीट किया तो वहां से मुझे मोटिवेशन आया कि अब मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कुछ। तो सर मैं रफ्तार को जैसे सुनता था, जो मेरे मोटिवेशन में बहुत ज्यादा हेल्प की उन्होंने, तो वहां से मैंने सोचा क्यों ना अब ये जो मैंने सॉन्ग लिखा है ऐसा ही कोई रैप में कन्वर्ट करके देखूं। तो सर वहां से जब मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले एक उसके बाद रैप बना के देखा, तो जो उन्हीं का था जो रफ्तार ने निकाला था एक बैक बेंचर करके, तो सर उन्हीं का हमने उठाया था वहां से, उनके गाने की 4 लाइन लेके सर मैंने पूरा रैप, एक सबसे पहला जो मेरा रैप था वो मैंने अपना बनाया था। और सबसे सर पहला जो मैंने YouTube पे अपना डाला था वो वही था मेरा भी, जो गाने का नाम था बैक बेंचर।
0: तो रिस्पांस कैसा मिला
1: सर उस गाने पे? अभी तक का सबसे ज्यादा अच्छा रिस्पांस आया है, 32K+ व्यूज जा चुके हैं सर।
0: nice,
1: जी
0: nice.
1: सर उस गाने पे।
0: हाँ, जब आप गाना लिखते हैं तो किस सोच के साथ आप गाने को लिखते हैं और फिर आप उसको किसके पास लेकर जाते हैं कि भाई या सर प्लीज आप मुझे गाइड करिए कि मेरा गाना सही लिखा गया है, या किसको इसको और कैसे मैं बेहतर बना सकता हूँ?
1: सर मेरे गाने बेसिकली जो अभी तक मैंने किए हैं और मैं कर रहा हूँ ये स्टोरी बेस्ड होते हैं। जैसे बैक बेंचर में मैंने स्कूल लाइफ बताई है, एक दूसरा सॉन्ग मेरा आया था झूठा इश्क, वो मैंने उसमें लव लाइफ बताई थी अपनी कि लव लाइफ कैसे होती है क्या। अब जैसे सर एक है मेरा, उसके बाद मैंने जो निकाला है मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास मेरे सॉन्ग का नाम है, तो सर उसमें मैंने एक स्टोरी बताई है कि मिडिल क्लास इंसान की कैसे
0: कहानी है, स्ट्रगल उसका,
1: जी जी कैसा स्ट्रगल है, तो वो है मेरा। तो मतलब मेरे जो थोड़े रैप है वो कहानी पे बेस्ड है, बाकी अभी मैं ऐसा कर रहा हूँ कि हिप हॉप टाइप भी मैं जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिलता जा रहा है तो वैसे वैसे मैं उसको बढ़ाता जा रहा हूँ अपने उसको टैलेंट को। तो आगे भी सर ऐसा है कि अभी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स रेडी हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छा कर रहे हैं क्योंकि अभी तो एक छोटी सी शुरुआत है।
1: जी जी,
0: मंजिल बहुत दूर है, बहुत करीब जरूर आएगी जब आप छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रहे हो, तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। यहाँ पर सुमित एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं हमारे लिसनर्स को, एक छोटा सा ब्रेक और उस पर एक गाना आपके लिए। सो कहीं जाएगा बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम, यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।

0: हंसते मुस्कुराते इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम, मैं हूं नाचीज हरदिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई टैलेंट है जिसको आप जमाने के बीच लेकर जाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं 01204060205 अर्थात हिंदी में। ये मैंने आपको बता दिया 120 40 60 205, एक बार पुनः इसकी पुनरावृत्ति कर मैंने आपको ये बात बता दी कि इसके माध्यम से आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। 90.8 FM@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। फिलहाल शारदा यूनिवर्सिटी का एक राइजिंग स्टार है जो कि हमारे बीच है, सुमित कुमार है, जो कि एक अच्छे रैपर है, बहुत अच्छा लिखते हैं, और इसके टैलेंट को इनकी फैमिली ने पहचाना, खुद इन्होंने पहचाना, इनकी टीचर ने पहचाना और इनके दोस्तों ने भी इनके टैलेंट को पहचाना। यही वजह है कि शारदा यूनिवर्सिटी में ये कि शारदा एफएम में ये अपने दोस्तों के साथ यहाँ आए, और मुझे लगा कि जब ऐसे अच्छे दोस्त हैं तो क्यों ना हम उनको ये दिखाएं कि रेडियो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से बातें होती हैं। तो सुमित, दोस्तों के बारे में क्या कहना चाहोगे?
1: सर, दोस्तों के बारे में सर ऐसा है कि मेरे कुछ लिमिटेड ही दोस्त हैं, मैं ज्यादा दोस्ती नहीं रखता हूं। और सर जो जितने भी हैं वो सर इतने अच्छे हैं कि बहुत सपोर्टिव हैं मेरे को लेके, मेरे मतलब वो ना सिर्फ इसमें म्यूजिकल में, मेरे को एज अ फ्रेंड वो अपने करियर में भी, जैसे मैं यहाँ पे नर्सिंग कर रहा हूँ तो वो उस फील्ड में भी मेरे को हेल्प करते हैं, तो वो ऑल ओवर वो जो मेरे फ्रेंड है वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करते रहते हैं मेरे को हर टाइम टू टाइम, पढ़ाई में भी लेके और गाने में भी लेके। और
0: वेरी गुड। लाइफ क्या नाम है दोनों दोस्तों के?
1: सर एक मोलश्री है सर जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जो अपने साथ में अभी आई है हमारे।
0: जी जी जी।
1: और सर एक प्रथम है।
0: प्रथम है।
1: हाँ जी।
0: चलिए इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं कहूंगा कि ये याराना आपका बना रहे, दोस्ती आपकी बनी रहे। तो सुमित, अब आते हैं कम टू द पॉइंट, यानी कि उसी मुद्दे पर आते हैं जिसके बारे में हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपके इस टैलेंट के बारे में जाना कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से आपने लिखना शुरू किया, कौन आपके आइडियल हैं जिनको आप मानते हैं। अब बात आती है फैमिली की, फैमिली का यहाँ मैंने जिक्र किया, फैमिली में किसने आपको सपोर्ट किया?
1: सर सपोर्ट सबसे पहले जो मेरे को फैमिली ने किया वो मेरी सिस्टर थी और ब्रदर थे।
0: क्योंकि वो आपसे बड़े हैं छोटे हैं?
1: हाँ सर, वो सबसे बड़े हैं, मतलब मैं सबसे छोटा हूँ अपनी फैमिली में, सबसे बड़ी मेरी सिस्टर है और उसके बाद मेरे ब्रदर, उसके बाद मैं।
0: तो वो क्या करते हैं दोनों?
1: सर मेरी जो सिस्टर है वो नर्सिंग ऑफिसर है, तो वहीं से उन्होंने मेरे को यहाँ पे नर्सिंग में डाल दिया।
0: ग्रेट, नाइस।
1: तो उसके बाद सर मेरे जो ब्रदर है वो बैंक में मैनेजर है।
0: उन्होंने बैंक में नहीं डाला?
1: उन्होंने बैंक में नहीं डाला।
0: ओके, तो उन्होंने आपके टैलेंट को पहचाना, उन्होंने आपको मोटिवेट किया कि आप अच्छा करो, लिखो, आगे बढ़ो।
1: यस सर।
0: अच्छा, मम्मी पापा की अगर मैं बात जानूं तो उनकी तरफ से कैसा रिस्पांस रहा?
1: सर स्टार्टिंग में तो मम्मी को मतलब इतनी नॉलेज है नहीं इस चीज के बारे में, तब मम्मी को जब मैंने दिखाया अपना गाना डाला तो मम्मी को खूब पसंद आया, तो मम्मी ने सपोर्ट किया। तो थोड़ा पापा है पीछे, मतलब डायरेक्टली तो सपोर्ट नहीं करते, इनडायरेक्टली वो करते हैं।
0: हाँ होते हैं भाई। तो, पापा चाहते हैं कि कुछ बन जाओ,
1: जी बन जाए,
0: और अच्छी तरीके से अपने करियर को स्थापित कर लो, खूब रुपया पैसा कमाओ।
1: जी सर।
0: लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इस फील्ड में रुपया पैसा नहीं है, खूब इज्जत है, खूब सम्मान है जब आप स्थापित हो जाते हैं।
1: जी सर।
0: तो सुमित, यहाँ पर मैं एक ब्रेक जरूर लूंगा, लेकिन ब्रेक से पहले मैं ये भी जानना चाहूंगा कि मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप जिम जाते हैं, आपने अपने आपको मेंटेन करके रखा है, तो ये शौक इसको और उसको कैसे बराबर मेंटेन करते हुए आप आगे बढ़ते हैं?
1: सर जैसे ये करियर ऐसा है, फील्ड ऐसी है कि इसमें सर पर्सनैलिटी भी काम आती है एज अ मॉडल, जैसे हमें शूटिंग करनी होती है, शूट करना होता है, तो अपनी पर्सनैलिटी मेंटेन करने के लिए तो सर मैं जिम, काफी साल का एक्सपीरियंस हो गया मेरे को, 5-6 साल हो गए हैं
0: तब से जिम कर रहे हैं।
1: जी जी, जिम कर रहा हूँ मैं, तो काफी ट्रांसफॉर्मेशन भी की मैंने इस चीज को लेकर फील्ड के अकॉर्डिंग।
0: अच्छा, नाइस। अच्छा, खान पान का बड़ा मैटर रखा जाता है, योग का भी बहुत ध्यान रखा जाता है, अनुशासित होना भी बहुत जरूरी है,
1: डिसिप्लिन डाइट।
0: हाँ, तो उसके बारे में बताइए कि किस तरीके से आप एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि लोग तो अब बहुत आलसी हो गए हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते और उल्टा सीधा खा रहे होते हैं, नींद वो पूरी ले रहे होते हैं, मतलब आलसी भी हो गए, नींद लेना बहुत जरूरी है, तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो लोग हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हैं?
1: सर आज की डेट में तो सर हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे हैं, एज़ अ मैं जैसे नर्सिंग ऑफिसर है, हमें हॉस्पिटल में जो ड्यूटी लगती है तो लोग को बहुत देखने को मिलता है, जैसे जंक फूड बहुत खाते हैं उन्हें, तो एब्डोमिन इन्फेक्शन काफी ज्यादा होने लगता है, तो आज की डेट में सर डाइट बहुत ज्यादा मैटर करती है, और सर मेरे लिए थोड़ा हार्ड वर्क हो जाता है, क्योंकि सर क्लिनिकल्स में ड्यूटी वगैरह होती है, फिर उसके बाद सर असाइनमेंट्स होते हैं, उसके बाद सर जिम, और उसके बाद सर डाइट, और एक सर हॉस्टल का खाना, सर सबको पता है हॉस्टल लाइफ।
0: तो आप यहाँ रह रहे हैं?
1: जी हॉस्टल में रह रहा हूँ सर मैं। तो हॉस्टल में सर थोड़ी डाइट।
0: मैं एक बात कहना चाहूंगा यार, ये अक्सर बात मुझे सुनने को समझने को मिलती है, हॉस्टल का खाना देखो यार इतना बुरा नहीं होता, बिकॉज क्योंकि हर एक सिस्टम है। जैसे सपोज करिए कि हॉस्टल के जो देख रेख के केयर टेकर जिन्हें आप कहें, वार्डन जिनको आप कहें, वार्डन के ऊपर भी एक कमेटी होती है, उनके ऊपर एक कमेटी होती है, और कहा जाता है कि अन्य के बारे में ऐसा नहीं कहना नहीं, चाहिए क्योंकि खाना ऑब्वियसली बहुत अच्छा नहीं, मिल नहीं। रहा होता है सर, लेकिन हाँ मैं ये समझ सकता हूँ कि माँ का प्यार अलग है भैया,
1: घर वाला स्वाद नहीं है,
0: वो सीन अलग हो सकता है। तो लेकिन दोस्त सुमित का कहना यही है कि अच्छा खाइए, अच्छा अपनी सेहत का ख्याल रखिए, एक्सरसाइज करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी सेहत में चार चांद लगते चले जाएंगे। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात मेंशन की कि जंक फूड जिसको हम कहते हैं कि फास्ट फूड, जो कि बहुत जल्दी तैयार होता है, बहुत जल्दी आपकी सेहत को वो नुकसान भी पहुंचा रहा होता है। तो फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद मैं आपको मिलूंगा, यहीं कहीं जाएगा मैं, सुनते रहिए। मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुमित कुमार, जो कि शारदा यूनिवर्सिटी का नर्सिंग डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, जेएनएम का कोर्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा ये गाना गाते हैं, बहुत अच्छे रैपर हैं, और इनके गाने के बारे में जरूर हम जानेंगे। तो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। और कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए और छोटे छोटे कदमों से आप निश्चित तौर पर आप अपनी मंजिल को पा ही लेंगे। जी हाँ, एक ऐसा ही उदाहरण मेरे सामने जुड़ा हुआ है। सुमित कुमार हैं, जो कि शारदा यूनिवर्सिटी के नर्सिंग डिपार्टमेंट से आते हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, जीएनएम का कोर्स कर रहे हैं। और इनकी जो शुरुआत रही, घर में एक नर्सिंग ऑफिसर भी हैं जो कि इनकी सिस्टर हैं, उन्होंने इनको प्रेरित किया। और वाकई शारदा विश्वविद्यालय में आकर कहते ना कि वेयर आर यू द वर्ल्ड इज हियर। जब आप एक यहाँ आएंगे, एक बार विजिट करेंगे, तो सुमित हम अपनी टैगलाइन बनाकर रेडियो पर प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं कि जब आप एक बार यहाँ आएंगे तो आप यहीं कर होके रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ का माहौल, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की पढ़ाई, प्लेसमेंट, बहुत सारी चीजें हैं। तो सुमित, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका कोई एक प्रोफेशनल नेम है या प्रोफेशनल कोई एक यूट्यूब है जिस पर आपकी वीडियोस होती हैं, लोग आपसे जुड़ सकें, आपसे बात कर सकें?
1: जी सर, मैं बताता हूँ। मेरा जो प्रोफेशनल नेम है, लेविन सुमित है। लेविन सर जो इंद्र जी के वेपन है, इंद्र जी का जो वेपन है उसको कहा जाता है लेविन, जिसका हिंदी में नाम है वज्र। हिंदी में वज्र कहते हैं,
0: वज्र।
1: हाँ, इसका मीनिंग थंडर स्टॉर्म, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बिजली निकलती है उनके में।
0: अच्छा,
1: तो लेविन का मतलब यही है।
0: ओके,
1: तो ये नाम मैंने ऐसा रखा कि लेविन सुमित मैंने इसलिए रखा कि कुछ रैपर है कि वो अपना नाम, जो रियल नेम होता है, हाइड करके वो कुछ दूसरा नाम रखते हैं कि उनसे लोग पहचाने। जो लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरा नाम प्यार से रखा हुआ है, उसके साथ मैं आइडेंटिटी के साथ वो अपनी दूसरे नाम, जो प्रोफेशनल नेम है, आगे लेके जाना चाहता है।
0: मैंने भी सोचा, मैं भी जब एक्टर बन जाऊंगा तो मैं भी अपने नाम के साथ चलूंगा।
1: जी सर, आप
0: ये बात आपने बहुत अच्छी कही, मैं भी इसी बात पर यकीन करता हूँ कि मेरा नाम गगन गौतम है। फर्स्ट नेम भी बहुत अच्छा है और सेकंड नेम भी मेरा माशाल्लाह बहुत प्यारा है, गौतम ऋषि के नाम पर हम गौतम है। इस तरीके से मुझे लगता है कि अपनी एक पहचान को बरकरार रखना, उसके साथ आगे चलना, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। सुमित, अगर फाइनली मैं आपसे कोई एक बहुत ही खूबसूरत गाना या यू कहें कि रैप सुनना चाहूँ, तो कौन सा आप हमारे लिसनर्स को रैप सुनाना चाहेंगे?
1: सर, मैं चार लाइन सुनाना चाहूंगा।
0: नहीं, तुम आठ सुनाओ बाबा, टाइम तुम्हारा है, बोलो।
1: ओके सर, जी सर, मैं अभी जो मैंने नया रिसेंटली सॉन्ग निकाला है, बम भोले, तो भोले बाबा पे मैंने कुछ सॉन्ग बनाया, तो वो उसकी लाइनें बताना चाहूंगा।
0: प्लीज।
1: भोले का रंग चढ़ा भंग, रगड़ भंग पिया मस्त जिया, भोले का फैन हूँ मैं, शिव का कैर हूँ मैं, विशिला जैर हूँ मैं, छोटा पत्थर तू पूरा कैलाश हूँ मैं, भोले तलाश में आ घूमू मैं तो तेरी चारों धाम में, मिलाना तेरे जैसा कोई मुझे सारे संसार में, दुश्मन का भोले सारे तेरे नाम से, काम बने मेरे सारे तेरे नाम से, बम बोले बोले तो बम बोले।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बोल, बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छा एक आपने ताना बाना बुनाया। तो भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर बनी है, बनी रहे, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फाइनली कुछ अगर आप कहना चाहते हैं कि उन लोगों के लिए जो फील्ड में आ रहे हैं, अपने करियर को आगे लेकर जाना चाहते हैं, एक अच्छे रैपर बनना चाहते हैं, क्या संदेश होगा?
1: सर, सबसे पहली बात है कि खुद के अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए ये चीज करने की, क्योंकि सर कुछ सोसाइटी है कि वो इस चीज में थोड़ा, सर जब स्टार्टिंग होती है, हम जैसे छोटे जैसे आर्टिस्ट हैं, उनकी जब स्टार्टिंग होती है तो सर सोसाइटी थोड़ा बहुत रोक टोक करती है कि इस चीज में कुछ नहीं रखा। तो सर खुद से ना, सर सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है इस चीज में। तो सर किसी की ना सुन के अपने दिल की करे, अपने मन की करे, जो टैलेंट है सर उसको आगे लेके जाए और कोशिश करते रहे सर, एक दिन अपने सपने पूरे जरूर होते हैं।
0: बेशक बेशक, जरूर सपने पूरे होते हैं, लेकिन उन सपनों के सामने सच बात तो ये भी कि दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, और इसलिए कहा जाता है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, यानी कि ईश्वर, खुदा, माँ बाप की ब्लेसिंग्स काम आती चली जाती हैं, और निश्चित तौर पर फिर वो एक दिन आपका आता है जब आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं, अपने सपने को साकार कर लेते हैं। तो सुमित, मुझसे बात करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा?
1: सर मेरे को बात करके सर आपसे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। सर आपसे एक मैं चीज सीखा हूँ यहाँ पे आके, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करूं मैं सर?
0: थैंक यू। नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ बातें होंगी तो जरूर मैं फिर आपके साथ साझा करूंगा। सो लिसनर्स, ये प्रोग्राम, ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? 01204060205 अर्थात 120 40 60 205 पर आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर बता सकते हैं। फिलहाल वक्त का इशारा हो चुका है, वक्त का इशारा जब होता है तो मुझे लेनी होती है अनुमति। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 90.8 FM। टाटा बाय बाय।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: क्या आपको पता है डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारी कैसे फैलती है? ये फैलती है मच्छरों के काटने से।
1: खुद को और अपने परिवार को डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी से बचा

0: आने के लिए अपना ये आसान उपाय।
1: हमेशा मच्छरदानी में ही सोएं।
0: दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं।
1: मच्छर अगरबत्ती जैसी मच्छर रोधी उपायों को जरूर अपनाएं।
0: पूरी बाह वाले कमीज, पैंट और मोजे पहनें।
1: और मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए
0: पानी की टंकी को पूरी तरह ढक कर रखें।
1: घर के भीतर तथा आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें।
0: फ्रिज के पीछे नीचे की तरफ लगी हुई ट्रे, टायर और खुले में रखे कोई भी बर्तन में जमा पानी को नाली में बहा दें।
1: कूलर और गमले वगैरह को हर सप्ताह खाली करके सुखाएं।
0: और गड्ढों को मिट्टी से भर दें, जिससे उसमें पानी जमा ना हो।
1: याद रखना, बुखार में देरी
0: पड़ेगी भारी। संचारी रोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर
1: 1800-180-5145 पर कॉल करें। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग की दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 सो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही वन एंड ओनली सुरुचिता 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। 9:21 16 तारीख क्या है खास जाने की जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑनली सुरुचिता 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, क्या बात है, झूठी कसूरी दीपिक रेवाल की।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का वन एंड ओनली सुरुशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:24, 16 तारीख यानी कि बुधवार का दिन, और गणपति बप्पा मोरिया से यही दुआ, यही प्रार्थना कि हम सबका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो। फिलहाल मौसम का जो मिजाज है, एक बार फिर से उसने खटिया से करवट लिए, खटिया से करवट लिए, या यूं कहें कि बेड से करवट लिए, या यूं कहें कि मौसम बदल रहा है। तो सुनने में ये आ रहा है कि दिल्ली NCR समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी कर दिया गया है। IMD की अपडेट ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश और आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो इलाके हैं, कुछ घंटों में मूसलाधार बारिश और आंधी तूफान की संभावना है, जिससे हवा की जो गति है, जो स्पीड है, 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। घंटा, हाँ मतलब आवर, अच्छा ठीक है। और ह्यूमिडिटी अर्थात उमस की अगर हम बात करें, आद्रता की अगर हम बात करें, तो वही सुनने में आ रहा है कि बारिश के बाद NCR के जो इलाका है, जो एरिया है, उमस से थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आएगी। चलिए बात करते हैं ट्रैफिक की। जाहिर सी बात है कि जब आप ऑन रोड निकलते हैं तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती है, लेकिन कुल मिलाकर मैंने महसूस किया है कि अगर आप 15 मिनट पहले निकलेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी नहीं। नोएडा की अगर मैं बात करूं, एलिवेटेड रोड पर एक हादसा, यानी कि सेक्टर 61 और सेक्टर 18 के बीच नोएडा की जो एक लेन है, वो हिस्सा धस जाने की वजह से हुआ। यूं है कि 20 फिट लंबा और 10 फिट गहरा गड्ढा हो गया, और जिससे ट्रैफिक प्रभावित हुआ है, यानी कि यातायात सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, और प्रशासन ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। और ये मार्ग जो, ये जो रूट है, वो गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और दिल्ली को जोड़ता है। तो फिलहाल ये कुछ खास बातें और एक वक्त, ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने और सुनाने का। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुरुशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। नोएडा एक्सपो की वजह से जाम की स्थिति बनी है, जाम के जाम से सब लोग परेशान हैं, रास्ते ब्लॉक हैं, ओवरटेक हम लोग कर रहे हैं, गलत दिशा में आ रहे हैं, जिसकी वजह से जाम और ज्यादा लग रहा है। इसके बारे में जानेंगे जरूर। सो कहीं जाएगा वो, सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का वन एंड ओनली सुरुशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूँ गगन आपके साथ। क्या बात है, चाहे तो वॉल्यूम आप कर

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

की आवाज, बहुत ही खूबसूरत गाना, सिर्फ और सिर्फ सुरुशादा 90.8 एफएम पर। क्या बात है, लवली ट्रैक, सिर्फ और सिर्फ सुरुशादा 90.8 एफएम पर। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। और स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त बज चुके 9:34, 16 तारीख है यानी कि बुधवार का दिन, और गणपति बप्पा का दिन, माँ शारदे का दिन। और ईश्वर से यही प्रार्थना, गणपति बप्पा से यही प्रार्थना कि हम सबके जीवन में सुकून हो, समृद्धि हो, शांति हो। शांति जब होती है तो मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, और इसी शांति के लिए, इसी सुकून के लिए हम सब भाग दौड़ कर रहे हैं। चलिए, जहां चाह वहां रहा, और जहां आपको खुशी मिले वो सारे काम करिए। चलिए, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि ट्रैफिक के अपडेट के बारे में हम बात करेंगे, हमारे आसपास के खास उसके बारे में भी हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। चूंकि अभी मैं ग्रेटर नोएडा से कैंपस की तरफ आ रहा था, गोल चक्कर जब मैंने क्रॉस किया तो वहां मुझे चक्कर पे चक्कर आने लगे। कहने का मतलब यह कि ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 15 से लेकर 18 सितंबर 2026 तक देश का सबसे बड़ा मशीनों का जो मेला है, यानी कि बाउमा कॉन एक्सपो इंडिया 2026 हो रहा है, और जिसकी मद्देनजर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। और इस इवेंट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। ये कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और रोड और हैवी व्हीकल मशीनों से जुड़ा एक इंटरनेशनल फेयर है, व्यापार मेला है, तो आप इसमें शिरकत कर सकते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आकर अपनी कंपनी को लॉन्च कर रही हैं, अपनी मशीनों को लॉन्च कर रही हैं। और इस मेले में 1100 एग्जीबिटर्स अर्थात प्रदर्शक शामिल हो रहे हैं, और रोजाना करीब 10,000 से भी ज्यादा लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और 15 से 17 सितंबर 10 से शाम के 6 बजे तक, 18 सितंबर को 10 से शाम के 5 बजे तक। और इसमें 18 बिलो यानी कि 18 वर्ष से अगर किसी की उम्र कम है तो वो इसमें पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उनको कुछ जानकारी शायद ना हो। और ट्रैफिक के अपडेट के बारे में भी बातें करेंगे जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुरुशादा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। सच तो यह कि इस एक्सपो की वजह से ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा डायवर्ट किया गया, जानेंगे जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुरुशादा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। ब्यूटीफुल ट्रैक ऑल यू सुरुशादा 90.8 एफएम, चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग।

राहत फतेह अली खान साहब की आवाज जो दिल को राहत देती है, साथ ही साथ संगत दे रही है श्रेया घोषाल फ्रॉम द मूवी सिंग इज किंग। सिर्फ और सिर्फ सुरु शारदा 90.8 एफएम पर। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। चलिए ब्रेक पर जाने से पहले मैंने वायदा किया था कि ब्रेक इस बार आएंगे तो हम बात करेंगे नोएडा एक्सपो सेंटर के बारे में। 15 से लेकर 18 सितंबर तक वहां पर एक फेयर यानी कि मेला चल रहा है और जिसके बारे में जान लेना समझ लेना बहुत जरूरी है। अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो मशीनों का मेला है और मेले में झमेला भी है ट्रैफिक का। हाँ, ट्रैफिक का झमेला है तो इस बात को नजरअंदाज न करेगा। यानी कि अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि कम से कम 15 मिनट से लेकर आधे घंटे का थोड़ा मार्जिन लेकर निकलेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी नहीं। तो 15 से लेकर सितंबर यानी 15 सितंबर से लेकर 18 सितंबर 2026 तक आप इस मेले में इस फेयर में आप शिरकत कर सकते हैं और बहुत सारी चीजों को आप जान सकते हैं समझ सकते हैं। और भारी भीड़ और वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस ने एक्सपो मार्ट के आसपास डायवर्जन लागू किए हैं। यानी कि यदि कोई एक्सपो मार्ट गोल चक्कर पर अगर जो व्हीकल्स हैं जो वाहन हैं वहां पर अगर कोई दबाव बढ़ता है तो गलगोटिया कट से सेक्टर G2IFS विला की ओर जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक को थोड़ा सा ये यूं कहें कि अस्थायी रूप से डायवर्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ बात आ रही है कि वैकल्पिक मार्ग का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिचौक या कासना की तरफ से आ रहे हैं तो जाम से बचने के लिए जो अंदर का इलाका है या यू के अंदर का जो एरिया है अंदरूनी सेक्टरों के रास्तों का आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि उस रास्ते से आप आ जा सकते हैं। और इसके बाद आने वाले समय में 25 से लेकर 29 सितंबर के बीच में एक और इवेंट होने जा रहा है तो कई सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि जब भी आप इस तरफ से आ जा रहे हैं तो गूगल जरूर कर लीजिएगा कि कहीं कोई व्हाट्सएप नहीं यानी कि कोई मेला तो नहीं चल रहा, वरना दिक्कत परेशानी आपको हो सकती है क्योंकि ट्रैफिक की वजह से दिक्कत परेशानी हो जाती है। और 15 से 20 मिनट अगर आप पहले आ जाएंगे तो कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। ब्यूटीफुल ट्रैक बिजुरिया फ्रॉम द मूवी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का ब्यूटीफुल ट्रैक ऑन योर शारदा 90.8 एफएम। इस गाने को रिक्रिएट किया गया और आवाज सुनू निगम की असिस कौर, साथ साथ तनिष बागची का म्यूजिक ऑलियन सुनू शारदा 90.8 एफएम। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ। क्या बात है,

0: ऐसे माहौल में एक ऐसा गाना तो बनता है ना, जो फिल्मों में अक्सर ऐसे गाने होते हैं, और गणेश चतुर्थी का उत्सव, गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, और ये हफ्ते 10 रोज उत्सव चलेगा, चारों तरफ धूम है, चारों तरफ खुशियां हैं, और गणपति बप्पा से यही दुआ, यही प्रार्थना है कि सबके जीवन में सुकून हो, सुख हो, समृद्धि हो, और हम सब सुकून की तलाश में ही तो भाग दौड़ कर रहे हैं, है ना। चलिए खुश रहिए, अभी सेहत का ख्याल रखिए। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं अगर आपके साथ। 9:56 हो चुके हैं, 16 तारीख है, सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है, समवन इज वेटिंग, है ना। चलिए आगे बढ़ते, तो बात निकल कर ये सामने आती है, UPI के बारे में तो अक्सर हमने सुना ही है, तो मुझे लगा कि इसके बारे में झटपट फटाफट बात कर सकते हैं। UPI का जो पूरा नाम है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, UPI, इसके जरिए हम पैसों का लेन देन करते हैं, और कम समय में एक दूसरे से, यूं कहें कि रुपया ट्रांसफ़र हो जाता है, हम किसी को रुपया दे देते हैं, और इसमें सिर्फ आप बिना बैंक खाता नंबर या IFSC कोड डाले, केवल सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर के जरिए UPI इस तरीके से, यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के जरिए तुरंत पैसा आप भेज सकते हैं। अब मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं, मुझे जो सुनने में आया, मुझे लगा कि इसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अफवाहें भी साथ ही साथ जन्म ले लेती हैं। सुनने में आ रहा है कि UPI पर चार्ज कहीं लगेगा, लेकिन वो जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो उनको लगेगा, यानी कि आम आदमी को एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अफवाहों से आप अपने आप बचा कर रखेगा। और ये 15 अक्टूबर से स्कीम लागू होगी, और मुझे लगा कि इसके बारे में बात कर सकते हैं।
1: अजमेर बलम्बिया, म्यूजिक कंपोजर मासूम शर्मा, सिंगर मासूम शर्मा, सॉन्ग नेम इज गच लागे, ऑल योर सुरुशादा 90.8 FM, सो लेट्स एंजॉय इट।
0: क्या बात है, इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ मैं ले रहा हूँ अनुमति, फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लिसनिंग सुरुशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। सोशल मीडिया के जरिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, सुरुशादा 90.8 FM के पेज पर। कैसा लगता है ये प्रोग्राम गगन के साथ, बताइएगा जरूर। फिर होगा आपसे मुलाकात, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, आए है, आ जाओ आज, आए है क्या।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.

में फल और सब्जी घर पर ही उगावे हम, कीटनाशकों से रहित उगाकर शुद्ध और ताजा खावे हम, कीटनाशकों से रहित उगाकर शुद्ध और ताजा

संयम से जीवन सफल हमारा हो, स्वास्थ्य संतुलन बना रहेगा ना कोई हल्का भारा हो, स्वास्थ्य संतुलन बना रहेगा ना कोई हल्का भारा हो, सौ में चमके न्या

0: आप सुन रहे कार्यक्रम सीएसआई लाभ कई, और जैसा आप सभी जानते हैं कि नौवां राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हो चुका है, और जो हमारी आशा बहन जी हैं वो भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लोगों को जागरूक करने में घर घर जाती हैं और बहुत सी बातें वो बताती भी हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ में हैं आशा बहन जी, साधना जी। तो सबसे पहले तो बहन जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है, और आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आप आशा हैं तो एक आशा के तौर पर क्या क्या काम आपको करने पड़ते हैं?
1: सर, हमें टीकाकरण पर जाना पड़ता है। टीकाकरण में जो गर्भवती वगैरह मिलती हैं हमें उन्हें बुलाना पड़ता है, बच्चों को भी बुलाना पड़ता है, वो टीकाकरण करवाते हैं, नहीं आते हैं तो उन्हें बार बार ये समझाना पड़ता है।
0: अच्छा, जैसे कि आप घर घर जाती हैं तो कहीं ना कहीं आपको समस्याओं का भी सामना करना पड़ता होगा।
1: सर, जैसे ये कह देते हैं कि जो है ना, क्या नाम है, हमारे बच्चे को तो बुखार आएगा, हम नहीं लगवाएंगे, उनके पापा ने मना कर दिया, या 6 महीने तक अपना दूध भी नहीं पिलाते तो हम बताते हैं उन्हें कि अपना 6 महीने तक अपना दूध पिलाया करो, और जो है ना कि बच्चे को टीका लगता है तो ये ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि बच्चा आपका ठीक है, जब आपको बच्चे को टीका लगेगा तभी तो आपका बच्चा ठीक है, इसलिए हम कई कई बार उनके घर जाके बताते हैं, समझाते हैं।
0: तो जैसे गर्भवती महिलाएं होती हैं, किसी का प्रसव होने वाला हो, आप हॉस्पिटल ले जाती हैं तो किस तरह से, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
1: पहले हम 3 महीने तक तो उनका 3rd महीने पर टीकाकरण करवाते हैं, फिर अगले महीने उनका 4 बार चेकअप करवाते हैं, 2 उनका टीका लगवाने के बाद उनका फिर हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो हमें ये पूछना पड़ता है उनसे कि सर क्या आप डिलीवरी कहाँ करवाएंगे सरकारी में, तो वो जो सरकारी के लिए तैयार होते हैं तो हम उन्हें सरकारी को पूरा चीज़ दिखाते हैं, आपको पूरा जानकारी देते हैं कि हमारे यहाँ ये चीज़ है, घर डिलीवरी मत करना वरना घर में ये खतरे हो जाएंगे।
0: और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको खान पान की क्या बात बताती हैं?
1: हरीदार सब्जियाँ, दाल रोटी, यही सब सारा सामान बताते हैं सर।
0: और आखिर में जानना चाहेंगे स्वच्छता के बारे में, जैसे आप घर में क्या बताती हैं जाके लोगों को?
1: हाथ धो के खाना पीना, साफ सफाई के बारे में बताते हैं सर, और बच्चे को मतलब क्या नाम है, मच्छरदानी के अंदर सुलाया करो क्योंकि मच्छर काटने से बुखार हो जाता, यही चीज जानकारी वगैरह देते हैं।
0: हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे कार्यक्रम सेहत से ही लाभ कही। और जैसा आप सभी जानते हैं कि नौवां राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हो चुका है और सरकार का बहुत जोर है कि सभी बच्चों का टीकाकरण हो और जो गर्भवती महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनको भरपूर पोषण मिले। और हमारी जो ANM बहन जी हैं वो उनकी भी अहम भूमिका है इस कार्यक्रम में। तो आज हमारे साथ में हैं ANM बहन जी संगीमल जी, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ANM बहन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी नमस्ते।
0: और जैसा हम देखते हैं जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, तो कहीं ना कहीं खून की कमी की समस्या अक्सर देखने को मिलती है, तो क्या वजह है और किस तरह से इसको दूर किया जा सकता है?
1: देखिए, वजह तो यही है कि वो अपने आप को ध्यान नहीं दे रही हैं, या तो कुछ लोगों के पास सुविधा नहीं है और वो हमारे पास आती हैं तो हम उनको इंजेक्शन लगाते हैं, तो हम उन्हें आयरन कैल्शियम की टेबलेट देते हैं, सरकारी हॉस्पिटल डाढ़ा CSC पे भेजते हैं या जिम्स हॉस्पिटल में भेजते हैं।
0: तो जिन महिलाओं में खून की कमी है, खासकर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, तो किस तरह से उसको पूरा किया जा सकता है, क्या उनका खान पान होना चाहिए, तो आप बताती होंगी।
1: मैं बोलती हूँ कि अगर आपके पास सक्षम है खाने के लिए तो आप दूध खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, जो हमने आयरन कैल्शियम की दवा दी है वो खाइए, पनीर खाइए। लेकिन जिनके पास नहीं है सुविधा, नहीं सक्षम है, तो वो तो साग सब्जी, हरे पत्तेदार सब्जियां खा सकती हैं और हम अपनी दवा देते हैं आयरन कैल्शियम की। और हमारे CSC पे ब्लड चढ़ने के लिए भी एक आयरन सिरप आती है, वो चढ़ाया जाता है।
0: तो कहने का मतलब ये है कि अगर सक्षम नहीं है आप, अच्छा जैसे पौष्टिक आहार है जैसे आपने बताया, तो कहीं ना कहीं जो हरे पत्तेदार साग सब्जियां हैं उसके जरिए भी जो खून की कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। अच्छा, एक और बात आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे पहले अक्सर हमारे जो घरों में है ना, जो लोहे की कढ़ाई होती है तो उसमें खाना बनता था, तो उसका कुछ फर्क पड़ता है?
1: बिल्कुल, अभी भी हम यही बोलते हैं कि अगर आप पालक वालक साग कोई भी सब्जी बनाइए तो आपके पास लोहे की कढ़ाई हो तो आप उसी में बनाइए, क्योंकि उसका बहुत फायदा होता है, उससे आयरन बहुत तेज बढ़ती है।
0: एक और बात आपसे जानना चाहूंगा कि मान लीजिए किसी गर्भवती महिला में खून की कमी है तो उसके बच्चे पे क्या फर्क पड़ेगा?
1: बहुत फर्क पड़ेगा, इसलिए कि बच्चा भी कमजोर होगा, जब वो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाएगी तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी ही नहीं, उसे तो ऑपरेशन के वो आ जाएगा।
0: तो कहने का मतलब यही है कि खान पान का ध्यान रखना बेहद जरूरी है और खासकर गर्भवती महिलाओं के सबके लिए, कि आपको कुपोषण का शिकार ना हो और जो खान पान होता है कहीं ना कहीं आपके जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है उस पर भी उसका बहुत असर होता है। तो ज़रूर ANM बहन जी की बातों का आप ध्यान रखिएगा कि पोषण का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है। अब बात करते हैं टीकाकरण की, तो टीकाकरण कितना ज़रूरी है हमें थोड़ा बताइए गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के बारे में और बच्चों के टीकाकरण के बारे में।
1: गर्भवती महिलाओं के लिए तो टीकाकरण इसलिए जरूरी है कि जैसे ही गर्भ का पता चले वैसे TT का पहला टीका लगना चाहिए, ताकि कोई ऐसा वो ना हो जाए कि उसे टिटनेस की कोई वो हो, उसको टिटनेस का वो होगा तो उससे बच्चे को फैलेगा, तो उसके लिए हम टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं 3rd महीने में। उसके 1 महीने बाद हम टिटनेस का दूसरा टीका लगाते हैं और उसके लिए दवा देते हैं हम, इसी के लिए होता है कि टिटनेस की बीमारी ना हो। और बच्चों के लिए तो सरकार बहुत सारे टीके जो हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में 5-5, 6-6 हज़ार के लग रहे हैं, गवर्नमेंट फ्री सुविधा दे रहा है, तो बच्चे के लिए एक एक दवा इंजेक्शन जो है वो बहुत महत्व है उसके लिए।
0: बिल्कुल ANM बहन जी, हम भी रेडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो हमारे सुनने वाले हैं, आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, गर्भवती महिलाएं अपना ध्यान जरूर रखें। और आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे खास करके जो महिलाएं उनके लिए और बच्चों के लिए?
1: मैं तो यही कहूंगी कि भाई वो अपने को ध्यान दें, खाने पीने के लिए भी ध्यान दें और अपने बच्चे को भी टाइमली आके टीके इंजेक्शन फ्री सुविधा मिल रही है तो लगवाएं।
0: बिल्कुल, तो जरूर सब इस तरफ ध्यान देंगे कि जो निशुल्क टीकाकरण होता है समय पर बच्चों का टीकाकरण जरूर करवाएं, ताकि भविष्य में होने वाली बीमारियों से बच्चों को बचाया जा सके और फिर आपको पछताना ना पड़े, और साथ ही साथ अपने पोषण का जरूर ध्यान रखें। ANM बहन जी, हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे कार्यक्रम सेहत से ही लाभ कही, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आप तक जानकारियां पहुंचे। और जैसा आप सभी जानते हैं कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हो चुका है, थीम भी रखी गई है कि हमारी आंगनबाड़ी हम सबकी जिम्मेदारी, और यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आशा बहन जी ये सब मिलकर काम करते हैं ताकि जन जन तक जानकारी पहुंचे, और साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं उनको समय पर पोषण मिले, टीकाकरण का हो, बच्चों का टीकाकरण हो। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ में है दीपशिखा बहन जी जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं एचआर में, और इनसे हम बात करेंगे। तो बहन जी सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है, और हम आपसे जानना चाहेंगे जो आपका आंगनवाड़ी सेंटर है क्या कुछ सेवाएं यहाँ पर गर्भवती महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनको दी जाती है।
1: गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण कराते हैं, उनकी फर्स्ट ANC कराते हैं, सेकंड, थर्ड, चार जांचें होती हैं गर्भवत से पहले वो कराते हैं, दो टीकाकरण कराते हैं, उनका हाइट वेट भी करते हैं और ब्लड की जांच भी करते हैं कि उनमें हीमोग्लोबिन कितना है कि जिससे कि वो HRP ना हो, और उनको सही खाने की सलाह देते हैं कि उनको ताजी खाना खाना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए और मौसमी फल वगैरह सभी को खाने की उनको सलाह देते हैं हम जो है, और समय से टीकाकरण कराना चाहिए और पहले से अपनी डिलीवरी के टाइम की तैयारी करके रखनी चाहिए, अपने बच्चे के साफ कपड़े, अपना टीकाकरण, अपना 2-3 जो अल्ट्रासाउंड वगैरह रिपोर्ट होती है वो सारी अपनी रिपोर्ट तैयार रखनी चाहिए जिससे कि हमें डिलीवरी के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। और डिलीवरी के बाद हमें जन्म लेते ही अपने बच्चे को पीला गाढ़ा दूध पिलाना चाहिए जो हमारे बच्चे के लिए एक अमृत का काम करता है, और 24 घंटे के अंदर अपने बच्चे को हमें BCG का टीका लगवाना चाहिए।
0: तो ये तो बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई। अब हम बात करना चाहेंगे आपसे जो कुपोषित बच्चे होते हैं तो उनकी पहचान आप कैसे करती हैं?
1: कुपोषित बच्चों की हम पहचान, उनका पेट बड़ा होता है, आंखें धसी हुई होती हैं और हाथ पैर बहुत पतले होते हैं और वो अपने समय के अनुसार ग्रोथ नहीं कर पाता है, उसके चलने फिरने में उसको दिक्कत होती है।
0: तो वो ठीक हो, पोषित हो जाए उसके लिए क्या उनको सलाह देती हैं, क्या उनके लिए आहार मिलता है?
1: उनके लिए डबल राशन मिलता है हमारी तरफ से, और उनको हम आयरन सिरप देते हैं जो कि हफ्ते में 2 बार हमको पिलानी होती है। तो हम उनको डॉक्टर को जाने की सलाह देते हैं, और जहाँ तक कि अगर ज्यादा कोई गंभीर समस्या होती है, ज्यादा कुपोषित बच्चा होता है, उसको हम NRC में भी भर्ती कराने की सुविधा है यहाँ पर जो है।
0: तो ऐसे आपके आंगनवाड़ी सेंटर पर भी कोई ऐसे बच्चे थे जो कुपोषित थे, फिर आपने उनकी पोषाहार की व्यवस्था करी तो वो ठीक हो गए हो?
1: हाँ, ऐसा हुआ था। यहाँ पे 2-3 बच्चे ऐसे थे जो कुपोषित थे और हम उनको राशन दिया था और उनको खाने की सलाह दी थी और उन्हें हॉस्पिटल में भी दिखाया था, तो वो बच्चे स्वस्थ हो गए थे।
0: अच्छा, अब हम जानना चाहेंगे जो गर्भवती महिलाएं होती हैं तो कहा यह जाता है कि अगर गर्भवती महिला का स्वास्थ्य सही रहेगा तो कहीं ना कहीं जो पेट में पल रहा बच्चा उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, तो उनके लिए आप क्या सलाह देती हैं, कैसे उनको खाना खाना चाहिए, खासकर जो गर्भवती महिलाएं और उसके बाद जो धात्री महिलाएं हैं?
1: धात्री महिलाओं को भी अपने समय से उनको 6 महीने तक आयरन कैल्शियम भी खाना चाहिए, और अपने खाने के साथ साथ उनको अतिरिक्त खाना भी खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जी, दूध, मौसमी फल वगैरह सभी ऐसी इस तरह की चीजें लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी दिन में कम से कम 2-3 घंटे तो आराम करना चाहिए, शुरू में ज्यादा भारी काम नहीं करना चाहिए, ज्यादा जीना नहीं चढ़ना चाहिए, और अपने 3 महीने के बाद आयरन कैल्शियम खाना चाहिए, और हमारे पूरे 9 महीने के गर्भ के दौरान 2 टीके लगते हैं, वो टीके लगवाने चाहिए।
0: अच्छा, आप घर घर विजिट करने भी जाती होंगी तो महिलाओं को क्या सलाह देते हैं आप?
1: यही सलाह देते हैं कि 6 महीने तक बच्चे को माँ का ही दूध पिलाएं, घर का बना हुआ खाना खिलाएं, जो आंगनवाड़ी से अब ये राशन मिलता है उसको ताजा ताजा बनाएं और बच्चों को खिलाएं।
0: बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हम तक यानी कि रेडियो के माध्यम से हमारे जो सुनने वाले हैं समुदाय के लोग हैं, खासकर हम उन्हीं को जागरूक करना चाहते हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं पोषण की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते हैं या टीकाकरण के प्रति वो जागरूक नहीं है, अपने बच्चों का टीकाकरण नहीं करवाते, पोषण का ध्यान नहीं रखते, तो उन सब तक ये जानकारी पहुंचेगी और कहीं ना कहीं वो जागरूक होंगे, फिर अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, गर्भवती महिलाएं अपना ध्यान रखेंगी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। So

0: सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के अंतर्गत अब हमारे साथ में है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सविता जी, उनसे हम बात करेंगे। तो बहन जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो नौवां राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हुआ है, तो क्या कुछ जिम्मेदारियां आपके ऊपर आई हैं?
1: ये इसमें हमारे ऊपर आता है कि हम घर घर जाके महिलाओं को, बच्चों को, मतलब जो उन बच्चों की माताएं होती हैं, उनको समझाना कि अपने बच्चे को तुम्हें मतलब ज़्यादा गंदगी में नहीं रखना है, अपने आसपास साफ सफाई रखनी है और अपने बच्चे को खान पीन का मतलब पूरा पूरा ध्यान रखना है ताकि उनको ना पकड़े कोई बीमारी।
0: अच्छा, अक्सर देखा जाता है जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, बच्चे भी होते हैं, अक्सर खून की कमी हो जाती है, तो क्या उनको आप सलाह देती हैं?
1: इसमें मतलब देखा जाता है कि जो ज्यादा कमजोर होते हैं, कहते हैं कि एनीमिया हुई है, तो उनको जो है अपने बच्चे को, एक तो आयरन सिरप बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें ना दोनों चीजें होती हैं, बच्चे का खून भी बढ़ता है और बच्चे के अंदर कैल्शियम की भी कमी नहीं होती है। और माँ के लिए भी आयरन कैल्शियम बहुत जरूरी नहीं है कि वो गर्भावस्था के टाइम ही खाएं उसको, वो अपने वैसे टाइम पे भी खा सकती हैं, बच्चा 1 साल का है या 2 साल का है उसमें भी खा सकती हैं। और गुड़ चना खाना चाहिए माताओं को।
0: अच्छा, देखा जाता है अक्सर महिलाएं परिवार में सबका तो ध्यान रखती हैं लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती हैं, खासकर खान पान का, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए?
1: हाँ, उसमें कई बार हो जाता है ऐसे कि जो महिलाएं होती हैं वो अपने काम में इतनी व्यस्त होती हैं कि खाने पीने का टाइम ही नहीं होता उनके पास। तो हम तो यही सलाह देते हैं कि देखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए, साथ साथ अपना भी ध्यान रखिए। जब तक आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो परिवार का कैसे रखोगे, कैसे तुम अपने बच्चे को स्वस्थ और मतलब पौष्टिक रख सकते हो उसे।
0: जरूरी है कि जो महिलाएं पहले अपना ध्यान रखें और तभी जो आने वाली पीढ़ी है वो स्वस्थ रहेगी। एक और योजना चलाई जा रही है सरकार की तरफ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या

0: होता है और उसमें ही उनका एक ईश्रम कार्ड होता है और एक उनका बैंक अकाउंट वाला होता है और एक होता है उनका जिससे उनका टीका लगता है, टीडी वाला टीका हो या फिर बच्चे वाला हो। बच्चा भी जब तक 9 महीने तक होता है तब तक हम PMVY वाला फॉर्म भर सकते हैं।
1: तो ये तो हो रही कि किस तरह से जो महिला है प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का लाभ उठा सकती हैं। अब बात करते हैं, जैसे आपका आंगनवाड़ी सेंटर है तो क्या कुछ यहाँ पर महिलाओं के साथ स्वास्थ्य चर्चाओं की बैठक भी होती है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
0: जी हाँ, इसमें हम मतलब अपने यहाँ पे जैसे एक होता है स्तनपान कराना, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। महिलाओं की एक बैठक होती है, उसमें हम बिठा के यही सब समझाते हैं कि आपको अपने बच्चे को कैसे कैसे मतलब दूध पिलाना है और कैसे उनको स्वस्थ रखना है, किस किस कारणवश वो स्वस्थ रह सकते हैं, किस कारणवश वो अस्वस्थ रह सकते हैं।
1: बहन जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और जरूर हमारे जो समुदाय के लोग हैं जागरूक होंगे। कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचाकर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, जब तक किसी राष्ट्र की एकता सशक्त है तब तक वो राष्ट्र भी सशक्त है। राष्ट्रीय एकता लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम और अपनत्व का भाव प्रदर्शित करती है। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त और संगठित बनाती है। राष्ट्रीय एकता ही वो भावना है जो विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जाति, वेशभूषा, सभ्यता और संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में बांधती है। अनेक विभिन्नताओं के बाद भी सभी लोग परस्पर मेलजोल से रहते हैं। हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है। जितनी विभिन्नताएं हमारे देश में हैं, उतनी शायद ही विश्व के किसी अन्य देश में देखने को मिले। हमारे देश में अनेक जातियों और संप्रदायों के लोग रहते हैं, जिनके रहन सहन, खान पान और वेशभूषा बिल्कुल अलग है। ये सभी राष्ट्रीय एकता के एक सूत्र में बंधे हुए हैं। जिस भूमि पर हम जन्म लेते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं, वो हमारी जन्मभूमि, कर्मभूमि और हमारा राष्ट्र होती है। उसके प्रति गहरा प्रेम ही राष्ट्रीयता की भावना होती है। हम सदैव उसके गौरव की रक्षा करें और साथ ही उसकी संस्कृति, उसके प्राकृतिक संसाधनों और उसकी आर्थिक समृद्धि में योगदान करने का दायित्व निभाएं। और ऐसी धार्मिक, राजनीतिक, भाषागत और जातिगत धारणा से बचें जिससे राष्ट्रीय एकता में बाधा पहुंचती हो। तो हमारी राष्ट्रीय एकता यूं ही मजबूती के साथ बनी रहे, इसके लिए हमें आपसी भेदभाव भुलाकर प्रेम और सद्भावना को बढ़ावा देना होगा। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही राष्ट्रीय एकता की, और जब बात राष्ट्र की हो रही है तो इसी क्रम में आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति गीत। कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना और उनके साथी। तो आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ऋषिपाल खदाना और उनके साथियों से ये देशभक्ति गीत। किसान मित्रों, ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर फसल को आवश्यकता अनुसार पानी ना मिले तो फसल बर्बाद हो जाती है, जिससे हमारे किसान भाइयों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। और हमारे देश में ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है। ऐसी जगह पानी की बहुत किल्लत रहती है और फसलों को उचित मात्रा में पानी भी नहीं मिलता और किसान भाइयों को खेती करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसान मित्रों, आपको बता दें कि हमारे देश की 85% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भूजल का उपयोग करती है। 65% भूजल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र की पानी की जरूरतों को भी भूजल से ही पूरा किया जाता है। पानी के इसी अतिदोहन और अनियमित उपयोग के कारण भूजल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है। भूजल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार ने अटल भूजल योजना चलाई है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा सामुदायिक नेतृत्व वाला भूजल प्रबंधन कार्यक्रम है। इस योजना का लक्ष्य देश के उन इलाकों में भूजल के स्तर को ऊपर उठाने का है जिन इलाकों में भूजल का स्तर काफी नीचे चला गया है। योजना का उद्देश्य भूजल की मात्रा में इजाफा करना है, साथ ही किसानों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से भी ये योजना भारत सरकार की ओर से लाई गई है। इस योजना के तहत भारत सरकार किसानों को खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में जल भंडारण सुनिश्चित करेगी। साथ ही सरकार का कहना है कि इस योजना के जरिए किसानों की आय दोगुनी करने में भी मदद मिलेगी। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना अटल भूजल योजना के बारे में। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी। कलाकार हैं सुनील चौहान।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान से ये देशभक्ति रागनी। किसान मित्रों, आजकल हर कोई किसान भाई चाहता है कि वो अपने खेत में 12 महीने फसल उगाए और उसे बेचकर अच्छे पैसे कमाए। ऐसे में ग्रीन हाउस तकनीक का इस्तेमाल करके आप खेती से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने खेत में 12 महीने खेती करना चाहते हैं तो आपको ग्रीन हाउस तकनीकी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसका सहारा लेना पड़ेगा, तभी आपकी ये इच्छा पूरी होगी। और इस तकनीक से आप 12 महीने खेती कर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। किसान मित्रों, ग्रीन हाउस का मतलब ऐसी परिस्थिति से जहां आप स्वयं से वातावरण को नियंत्रित करके फसल को आसानी से उगा सकते हैं। ग्रीन हाउस तकनीक से फसलों को विकसित करने और उत्पाद बढ़ाने में मदद मिलती है। अगर हम आसान भाषा में कहें तो ये फसलों को संरक्षित करने का एक तकनीक है। तो किसान मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने खेत में 12 महीने फसल करें तो आपको ग्रीन हाउस तकनीक का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर आप इस तकनीक का सहारा लेकर के फसल करना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर के इस तकनीक के बारे में और विस्तार से समझ सकते हैं और किन किन उपकरणों की इसमें आवश्यकता होगी ये भी आपको वहां बता दिया जाएगा। साथ ही साथ कोई प्रशिक्षण होता होगा इसके बारे में तो वो भी आपको दे दिया जाएगा। जब आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तब इस तकनीक के जरिए आप 12 महीने खेती करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना ग्रीन हाउस तकनीक के बारे में। और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक और देशभक्ति रागनी। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना और पूजा शर्मा।

ज्ञानेंद्र सरधाना और पूजा शर्मा द्वारा गाई गई इसी देशभक्ति रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: कदम छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

प्रेमी सजनों बन जाते हैं रिश्तेदार, बन जाते हैं रिश्तेदार जब की जर पास होता है और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। मेहरबानों आज सत्यवान डोरी और कुल्हाड़े की लाला से खुशामद करता है। लाला जी हम पर बुरा वक्त है और हमें डोरी और कुल्हाड़ा गुजर वसर के लिए चाहिए, लेकिन दोस्तों कहन लगा कि चाहे मेरे ये फटे पुराने कपड़े आप गिरमी धर लो, लेकिन मुझे ऐसी मुसीबत में डोरी और कुल्हाड़ा दे करके सहारा दे दो। दोस्तों डोरी और कुल्हाड़ा सत्यवान को मिल गए और सत्यवान लकड़ी काटना शुरू कर देता है बियाबान जंगल में और अपने माँ बाप की खातर उन लकड़ियों को बेचकर दो रोटी का सहारा देता है। मेहरबानों उधर मगध देश के अंदर राजा अश्वपति की इकलौती सुता सावित्री शादी के योग हो जाती है और दोस्तों चिंता हो गई अश्वपति को। नाई ब्राह्मण जगह जगह घूमे लेकिन जोड़ी का वर नहीं मिल पाया और दोस्तों बाद में अश्वपति किस तरह से कहने लगे बेटी सावित्री।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

0: एरी सुशीला, तेरो बालक ऐसो रो रहे हो है, भूखो है का?
1: हाँ भूख ही लग रही होएगी।
0: तो याए शहद दे दे।
1: हाँ तू 2 मिनट बैठ, में लेके आई।
2: मैं पागल वागल हो गई है का? तो उससे कितनी बेर बोली है कि 6 महीने के होने से पहले बालक है माँ के दूध के अलावा कुछ और न देना चाहिए। ये बालक की सेहत को घना नुकसानदायक है।
1: संगीता की भी तो बालक हुए हो, वो तो शायद देख रही है अपने बालकन ने जब वाके दूध न उतर रहो।
2: डॉक्टर की बात तो तेरी बुद्धि में पता न क्यों घुसना रही है, वाने कही ना यू सब देने से बालक बीमार हो जावे। बे मतलब के काम करवा लो बस। बालक के स्तनपान करवाने से बालक की प्रतिरक्षा प्रणाली तगड़ी होवे, जासु बालक संक्रमण, एलर्जी और बाकी बीमारियों से दूर रहवे। बालक में हड्डी वाली बीमारी होने का भी खतरा कम रहवे और माँ बालक के संबंध में मिठास भी आवे। और स्तनपान न करवाने वाली महिलाओं में जल्दी गर्भाधारण करने की संभावना बनी रहे, खून की कमी और डिलीवरी के टाइम पे अधिक रक्तस्राव की भी संभावना बनी रहे, स्तन और अंडा से कैंसर का भी खतरा ज्यादा हो गए। तो इसलिए अपने बालक के स्तनपान ही कराएं और 6 महीने का होने से पहले बालक के सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं।
3: यूनिसेफ और सुरु शारदा 90.8 FM की तरफ से जनहित में जारी।

0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाबा,
0: अरे सुनो तो, नोना सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: पहले जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: सुनो शारदा 90.8 FM पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। हमारा रेडियो स्टेशन यही कहता है कि हम सबको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, और यही वजह है कि स्मार्ट के सौजन्य से एक खास कार्यक्रम यहाँ से हम लोग ऑन एयर कर रहे हैं, जिसका नाम है हिंसा को नो। और इसी संबंध में बहुत सारी बातें महिलाओं से संबंधित लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जैसे कि एक खास विषय है महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास। इसके अंतर्गत वो कौन कौन सी खास बातें आती हैं? समस्या है तो जाहिर सी बात है कि समाधान भी है। कानून के जरिए हम अपने हक कैसे ले सकते हैं, कुछ बातों से हम अनभिज्ञ हैं। जी हाँ, यही एक वजह है कि एक खास प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस वार्ता के जरिए। चलिए बिना समय गवाए हुए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये परिचय आखिर कहता क्या है। पितृसत्तात्मक यानी पुरुषों द्वारा नियंत्रित समाज में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कमतर माना जाता है। पितृसत्ता असमान सत्ता संबंधों पर आधारित है, जिसमें महिला के जीवन के हर पक्ष पर पुरुष का नियंत्रण होता है। परिणाम स्वरूप महिलाओं की संसाधनों तक पहुंच कम होती है और परिवार में पुरुषों के मुकाबले उनकी आवाज बहुत कम या न के बराबर सुनी जाती है। और ऐसा अक्सर हमने घरों में देखा है ना। और इसी के चलते महिलाओं पर प्रभुत्व पुरुषों का रहता है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इस व्यवस्था का पीढ़ी दर पीढ़ी सामाजिक कायदों और सांस्कृतिक मूल्यों के नाम पर पोषण होता रहता है, इससे महिलाओं का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। ये परिचय का एक छोटा सा हिस्सा है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आपकी भी कुछ ऐसी ही बात है या ऐसी ही कहानी है तो प्लीज आप मुझे जरूर साझा करें 0120-4060-205 पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के साथ भेदभाव का चक्र उनके जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है, जहां लड़कियों के मुकाबले लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिसके कारण हम लिंग चयन आधारित भ्रूण हत्या के मामले अक्सर देखते हैं। ये भेदभाव और असमान सामाजिक दर्जा महिलाओं पर होने वाली हिंसा के मूल कारण है। मुझे लगता है कि ये जो कहानी है, ये जो बातें हैं, वो आपकी, हमारी या समाज में जो हो रहा है वो बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। महिला हिंसा एक गंभीर समस्या है जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में महिलाओं को प्रभावित करती है। इसकी जड़ें सामाजिक ढांचों में हैं और समाज के सभी वर्गों में फैली हुई है। हर उम्र, वर्ग, धर्म, सांस्कृतिक, जाति, इलाके और शैक्षिक स्तर की महिला इससे प्रभावित होती है। यद्यपि आमतौर पर माना यह जाता है कि पुरुष ही महिलाओं पर हिंसा करते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। अक्सर औरत अपने परिवार की पितृसत्तात्मक सोच वाली महिला सदस्यों द्वारा भी हिंसा का शिकार होती रहती है। अधिकांश मामलों में हिंसा परिवार या पास पड़ोस के दायरों में ही होती है। हिंसा कहीं भी केवल गरीबी एवं अज्ञानता से जुड़ी हुई समस्या नहीं है। हिंसा सिर्फ एक पारिवारिक या निजी मामला नहीं है, ये एक सामाजिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य की भी समस्या है। चलिए, ये जो बातों का सिलसिला है लगातार जारी है और इस संबंध में जब ब्रेक के उस पार में आपसे जुड़ूंगा तो बात करूंगा हिंसा के रूप कौन कौन से हैं और कारण क्या है, इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रख सकते हैं और जाने अनजाने में कहीं ऐसा तो नहीं कि आप महिलाओं पर यह अत्याचार कर रहे हैं और हो सकता है कि फिर आपके खिलाफ कार्यवाही हो जाए और फिर आपको लेने के देने पड़ जाए। इसके बारे में विस्तार में चर्चा जरूर करेंगे, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए विशेष कार्यक्रम महिलाओं पर आधारित। मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

ब्रेक के बाद एक ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत. आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ. आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वाकई एक खास विषय है जिस पर हर कोई बात करना चाहता है, जिसके बारे में हर कोई समझना चाहता है. और मुझे लगता है कि ये अपने अधिकारों की बातें हैं जिनके बारे में महिलाओं को पुरुषों को पता होना चाहिए कि हम जाने अनजाने में सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं. अगर गलत कर रहे हैं तो इसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है. अगर आप गलत कर रहे हैं तो उस वक्त आप अपने आप को रोकिए. मुझे लगता है कि ये जो चर्चा मैं आपके साथ करने जा रहा हूं इन बातों से आपको समझ में आएगा कि क्या हम सही कर रहे हैं या हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो रही है. विषय है महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास. इसके अंतर्गत कुछ जागरूकता वाली बातें हैं जिसके विषय में मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूं. पहले बात यह आती है कि हिंसा के रूप क्या क्या हैं, वो कारण कौन कौन से हैं. इससे पहले थोड़ा मैं समझना चाहता हूं और आपसे डिस्कस करना चाहता हूं लिंग यानी सेक्स एवं जेंडर. जेंडर आधारित हिंसा के जटिल निर्धारक हैं. लिंग का अर्थ होता है महिला एवं पुरुष की जैविक एवं शारीरिक गुण. जेंडर का तात्पर्य वो भूमिकाएं व्यवहार गतिविधियां एवं गुण जिन्हें किसी समाज में महिलाओं एवं पुरुषों के लिए उपयुक्त समझा जाता है. लिंग आधारित गुणों के कुछ उदाहरण हैं, मसलन जैसे कि महिलाओं को महावरी यानी मासिक धर्म होता है जबकि पुरुषों को नहीं. महिलाओं में स्तन होते हैं, सामान्यतः दूध बनाते हैं जबकि पुरुषों में ऐसा नहीं होता है. अब मैं उसी टॉपिक पर आता हूं जिसके विषय में मैं आपसे बात कर रहा था, हिंसा के रूप और कारण के बारे में. महिला हिंसा के कई रूप देखे जा सकते हैं. सबसे पहले बात सामने आती है शारीरिक हिंसा के बारे में. थप्पड़ मारना, कट पिट जाना, दांत काट लेना, बाल खींचना, मारना, मुक्का मारना, लात मारना, हड्डी तोड़ना या हथियार के द्वारा बिना हथियार के चोट पहुंचाना, तेजाब से हमला करना, गला घोटना और प्रताड़ना के कारण हुई गर्भावस्था की जटिलताएं. दूसरा टॉपिक है यौनिक हिंसा, यानी कि इसके संबंध में बात सामने आती है यौनिक हमले जैसे बलात्कार या बलात्कार की कोशिश, जबरन यौन संपर्क या ऐसी कोई गतिविधि, छेड़छाड़ करना, पीछा करना, यौन कार्य के लिए खरीद फरोख्त करना, जबरन विवाह या बाल विवाह करना, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न करना, परिवार नियोजन के साधन प्रयोग करने से रोकना, परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा यौन प्रयास करना, बच्चों का यौन शोषण, जबरन या तकलीफ देह यौन क्रिया एवं यौन संबंध से वंचित रखना इत्यादि. आर्थिक हिंसा, इसके संबंध में विशेषज्ञ बताते हैं कि पुश्तैनी संपत्ति और पैसों से जुड़े अधिकार न देना, भोजन, कपड़ा, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल से वंचित रखना, महिलाओं को काम करने से रोकना, खर्च किए गए पैसे का उत्तेजित होकर हिसाब मांगना, दहेज की मांग, मुफ्त में घरेलू श्रम कराना, सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों द्वारा पैसों से संबंधित उत्पीड़न करना इत्यादि वगैरह वगैरह. चौथा पॉइंट आता है भावनात्मक हिंसा, उपेक्षा, मानसिक आघात, मार डालने या अन्य प्रकार से नुकसान पहुंचाने की धमकियां, अकेला रखना, शक करना, गाली गलौज व ताने, बच्चों के पैतृत्व के अधिकार से वंचित रखना, महिलाओं को सार्वजनिक रूप से या अकेले में अपमानित करना और उसके हर काम में कमियां निकालना इत्यादि. तो इस प्रकार से कुछ रूपों के बारे में मैंने यहां आपसे चर्चा की और उसको विस्तार से भी मैंने आपको बताया कि क्या अगर हमारे घर में ऐसा हो रहा है तो ये

अपराध है जो शायद आप जानते भी नहीं, और अगर आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं तो ये एक गुनाह है और आप इस दंड के भागीदार हो सकते हैं, यानी कि आपके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। अगर ऐसा आपसे हो रहा है तो प्लीज आप अपने आप को रोकिए, अपने आप को सुधारिए, ताकि हम महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोक सके, और यही यानी सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्देश्य है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद, आप कहीं जाएगा मत। हाँ, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो 01204060205 पर आप अपने मन की बात मुझसे साझा कर सकते हैं। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, मेरे यानी गगन के साथ।

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात कर रहे हैं महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास। इसी संबंध में बहुत सारी बातें आपसे मैं साझा कर रहा हूँ। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ हिंसात्मक व्यवहार जैसे शारीरिक या यौनिक तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन भावनात्मक और आर्थिक हिंसा को अक्सर हिंसा के रूप में देखा ही नहीं जाता। आपके गांव और आसपास के समुदाय में हर रोज महिलाओं के साथ हिंसा की जो घटनाएं हैं वो लगातार होती रहती हैं और अमूमन उनको हम देख भी रहे होते हैं। महिला हिंसा का दायरा पूरे जीवन को समेटे रहता है। जीवन की शुरुआत यानी लड़की के जन्म के पहले से हिंसा बुढ़ापे तक चलती रहती है। आप ऐसे मामले अक्सर देखते होंगे या देखती होंगी जहां गर्भ सिर्फ इसलिए गिराया गया क्योंकि वो एक लड़की थी। लड़कियों की उपेक्षा आम बात है, ये विभिन्न रूपों में दिखाई देती है, जैसे उन्हें स्तनपान से वंचित रखना, भाइयों के मुकाबले कम खाना देना अथवा लड़कों के खाने के बाद लड़की को खाना देना, बीमार पड़ जाने पर अस्पताल न ले जाना, स्कूल न जाने देना, विवाह की वैध आयु अर्थात 18 साल की उम्र के पहले ही शादी कर देना इत्यादि। अक्सर आपने, हमने, हम सब ने अपने आसपास महिलाओं के साथ छेड़खानी और शोषण की घटनाएं देखी सुनी भी होंगी। महिलाओं पर यौन हमलों के अलावा तेजाब फेंके जाने की घटनाओं के बारे में भी हमने सुना होगा। यौन हिंसा नवजात शिशु से लेकर किशोरावस्था तक हो सकती है। हिंसा के अन्य स्वरूपों में जो चीजें शामिल हैं, दहेज उत्पीड़न, परिवार, जाति या समुदाय की इज्जत की रक्षा के नाम पर अत्याचार, यानी समाज या परिवार के नियम कानूनों के खिलाफ विवाह करने वाले जोड़ों की हत्या अथवा तरह तरह की यातनाएं उन लोगों को दी जाती हैं। काम की जगह, स्कूलों या सार्वजनिक जगहों पर खौफ और उत्पीड़न का सामना करना, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको सुनकर और आप तक पहुंचाकर मुझे सही नहीं लग रहा। ये वो बातें हैं जो हमारे समाज में कहीं ना कहीं आसपास हो रही हैं। हिंसा का सामना केवल लड़कियों और युवतियों को ही नहीं करना पड़ता, बल्कि बुजुर्ग महिलाएं भी अक्सर हिंसा की शिकार होती हैं। उनकी उपेक्षा की जाती है, उनकी सेहत की देखभाल तक नहीं की जाती, पौष्टिक भोजन नहीं दिया जाता, उनसे तुच्छ काम करवाए जाते हैं या कभी उन्हें असहाय भी छोड़ दिया जाता है। घरेलू हिंसा महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा का सबसे सामान्य रूप है। ये पति या निकट के पारिवारिक सदस्यों द्वारा की जाती है। घरेलू हिंसा में जो बातें मैं आपसे साझा कर रहा हूं सभी प्रकार की हिंसाएं शामिल हैं, यानी शारीरिक, भावनात्मक, आर्थिक और यौन हिंसा। इसके अलावा पति या परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा किए जाने वाले बलात्कार सहित किसी भी तरह के यौन हमले को यौन हिंसा के रूप में ही देखा जाना चाहिए। इस तरह की हिंसा ओझल रहती है क्योंकि ये घर की चार दीवारी के भीतर होती है और अक्सर लोग इसे हिंसा के रूप में न देखकर परिवार का निजी मामला और जीवन का सामान्य हिस्सा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। तो कहने का आशय हमारा यही है, इन जागरूकता वाली बातों को आपको सुनना, समझना चाहिए और अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको अपनी आवाज जरूर उठानी चाहिए। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास, इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं और इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि क्या सही है क्या गलत है। ये फैसला खुद हमारे परिवार जन को करना पड़ेगा। ब्रेक पर जाने से पहले घरेलू हिंसा के कुछ प्रकार के बारे में मैंने बातें आपसे साझा की। अब बात करते हैं, अक्सर दुर्व्यवहार की शिकार महिलाएं मदद लेने से झिझकती हैं। कहीं ना कहीं एक डर, घबराहट, शर्माहट होती है क्योंकि वे शर्म और अपराध बोध से घिर जाती हैं। उन्हें अपने ऊपर आरोप लगने का डर रहता है। वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होती। नकारात्मक और बुरे अनुभवों के कारण उन्हें ये भरोसा नहीं होता कि विभिन्न संस्थान और लोग यानी पुलिस, डॉक्टर उनकी मदद कर सकते हैं। परिणामों के डर और परिवार की इज्जत बचाने के महिलाएं अपने ऊपर होने वाली हिंसा को बर्दाश्त करती रहती हैं और ऐसा अक्सर हमने अपने अपने घरों में देखा है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। वो ये सोचकर भी चुप रह जाती हैं ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। अपनी आवाज उठाने पर महिलाएं अक्सर अपनी ससुराल के घर से निकाल दी जाती हैं और अक्सर उन्हें अपने मायके के घर से भी कोई सहारा नहीं मिलता। इस डर के कारण महिलाएं अक्सर अपनी आवाज बिल्कुल भी नहीं उठा पाती, किसी से कुछ कह नहीं पाती। एक अकेले रहने वाली महिला या अपने मायके में रहने वाली महिला को भी समाज में स्वीकार नहीं किया जाता है। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के विभिन्न शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्परिणाम होते हैं। महिलाएं लगातार अपने अधिकारों और हितों से वंचित रह जाती हैं। सार्वजनिक और राजनीतिक मंचों पर उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। और इसके अलावा अक्सर हम जो चीजें देखते हैं, जैसे कि निर्णय लेने के पदों पर पहुंचने के अवसर घट जाते हैं। स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार अवसरों तक उनकी पहुंच भी सीमित हो जाती है। एक आशा के रूप में कहीं ना कहीं एक महिला दूसरी महिला की मदद भी कर रही होती है। उनके साथ पहले से ही आपका तालमेल बना रहता है ना? जो आपको अच्छी लगती है, आप उनसे बातें भी करती हैं। मैं विशेषकर महिलाओं की बात करता हूँ। और कहीं ना कहीं अक्सर हमने ये देखा है कि एक महिला दूसरी महिला को पसंद नहीं करती, या सीधे लफ्जों में कहें कि एक महिला दूसरी महिला की दुश्मन तक हो जाती है। कहीं ना कहीं हम समाज में ये देखते हैं कि ऐसी महिलाओं को ढूंढना आसान है जिन्हें हिंसा का कोई खतरा है या जो किसी प्रकार की हिंसा का सामना कर रही हैं। चलिए, और क्या है खास इसके विषय में हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ।

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास, इस संबंध में बहुत अच्छी जानकारी मैं जुटाकर लेकर आया हूं आपके लिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी का आप लाभ उठाएंगे, उठाएंगी। लगता है कि कोई सवाल है तो जरूर आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं 0120-4060-205 पर। अब बात करते हैं कुछ कारणों की और उन कारणों को उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। महिलाओं और पुरुषों की सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भूमिकाएं और उनकी साथ ही साथ उनसे जुड़े व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति। उदाहरण मसलन जैसे लड़कों साथ ही पुरुषों को कठोर और आक्रामक होना चाहिए, जबकि लड़कियों इसके अलावा महिलाओं को विनम्र, आज्ञाकारी और शांत होना चाहिए। दूसरी बात, महिलाओं की गतिविधियां खाना पकाने, घरेलू काम और पति साथी बच्चों की देखभाल तक सीमित होनी चाहिए। लड़कियों और महिलाओं को सही ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। अगर पुरुष उन पर यौन हिंसा करते हैं तो लड़कियां ही उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाने की दोषी हैं। दूसरा कारण समझते हैं रिश्तों से जुड़ी भूमिकाओं और असमान सत्ता संबंधों के बारे में अपेक्षाएं। उदाहरण, पुरुष जो चाहे कर सकता है और अपनी पत्नी के साथ किसी भी तरह का व्यवहार कर सकता है, लेकिन पत्नी को हमेशा अपने पति का कहना मानना चाहिए। तीसरा कारण समझने की कोशिश करते हैं डायन, चुड़ैल, जादू टोना प्रथा और उससे जुड़ी प्रथाओं से संबंधित अंधविश्वास। विशेषज्ञ इसका उदाहरण देते हैं, जो महिलाएं गंभीर मानसिक आघात से पीड़ित होती हैं, उन्हें डायन करार दे दिया जाता है और अक्सर उन्हें अत्याचार सहने के लिए विवश किया जाता है या उन्हें समुदाय से बहिष्कृत कर दिया जाता है। अगला कारण है ये मानना कि पुरुष जन्म से ही श्रेष्ठ और बुद्धिमान होते हैं। उदाहरण, पुरुषों को इस सोच के साथ बड़ा किया जाता है कि उन्हें कुछ खास चीजों पर अधिकार है, जैसे एक अच्छी पत्नी पाने का अधिकार, बेटों पर अधिकार और परिवार के सभी फैसले लेने का अधिकार, सिर्फ इसलिए कि वो पुरुष है। इसके पीछे छुपे हुए कारण संपत्ति पर अधिकार और महिलाओं को इस अधिकार से बाहर करने के प्रयास से जुड़े हुए हो सकते हैं। अगला कारण, मान्यताएं जो पुरुषों को महिलाओं पर विशेष अधिकार देती हैं। उदाहरण, पुरुष सोचते हैं कि महिलाएं और लड़कियां उनकी संपत्ति हैं, जिन पर उनका पूरा अधिकार है। वो सोचते हैं कि उनके साथ वो चाहे जैसा व्यवहार कर सकते हैं, जबकि ये गलत बात है। अगला कारण आता है कि परिवार को निजी क्षेत्र यानी दायरे के रूप में देखना और उस पर पुरुष का नियंत्रण होना। उदाहरण बतौर बात सामने आती है कि कई लोग सोचते हैं कि घरेलू हिंसा के मामलों में हस्तक्षेप करना उनका काम नहीं है, मियां बीबी या परिवार के निजी मामलों में दखल देना सही बात नहीं है। जबकि सच ये है कि महिला हिंसा के किसी मामले को जानने पर उसमें हस्तक्षेप न करना अपराध है। अगला कारण है विवाह से जुड़ी प्रथा यानी वधू की कीमत देना अथवा दहेज। इसमें बात सामने आती है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला को उसके पति और पारिवारिक सदस्यों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। वैसे देखा जाए तो कारण कई सारे हैं, कई सारे उदाहरण हैं। इसके बारे में जब चर्चा हो रही है तो यकीन मानिए कि ये बातें मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम आपसे जुड़ेंगे ही, कहीं जाएगा मत। बहुत अच्छी जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी यानी सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।

नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, यानी गगन के साथ। महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास, इसी संबंध में ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कुछ कारणों के बारे में जिक्र किया उदाहरण के साथ। चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कुछ कारण और कुछ उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। हिंसा को विवाद झगड़ा सुलझाने के तरीके के रूप में देखना एक कारण। उदाहरण, परिवारों द्वारा समुदाय

समुदायों में झगड़े का बदला महिलाओं के साथ हिंसा के रूप में लिया जाता है। दूसरा कारण, महिलाएं अक्सर बेरोजगार होती हैं या आर्थिक संसाधनों तक उनकी बहुत कम या न के बराबर पहुंच होती है। नकद और ऋण के संसाधनों तक सीमित पहुंच के कारण महिलाएं अक्सर पुरुषों पर आर्थिक रूप से निर्भर हो जाती हैं। उदाहरण बताते हैं विशेषज्ञ कि वित्तीय संसाधनों की कमी और इसके कारण पति या उसके परिवार पर पैसों के लिए निरंतर निर्भरता महिलाओं को अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर, आवाज उठाने से भी रोकती है। इसी में बात आती है कि अपमान करने वाले पति के साथ रहने के लिए औरत विवश होती है, क्योंकि उसके पास न तो पैसा होता है और न कहीं जाने के लिए सुरक्षित ठिकाना। अगला कारण समझते हैं, परिवार में भेदभावपूर्ण परंपरागत नियम रिवाज जो महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखते हैं। उदाहरण के तौर पर बात सामने आती है कि कानून द्वारा दिए गए अधिकारों के बावजूद कई परिवार अपनी बेटियों को पुश्तैनी संपत्ति में हिस्सा और संपत्ति में अधिकार नहीं देते। अगला कारण, महिलाएं अधिकारों से जुड़े कानून के बारे में जागरूकता का अभाव। ये एक सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है। तो यही एक वजह है कि जागरूकता वाली बातें सामुदायिक रेडियो स्टेशन यानी कि सुनो श्रद्धा 90.8 FM आप तक पहुंचा रहा है। उदाहरण के तौर पर बात सामने आती है कि दहेज, PCPNDT, यौन उत्पीड़न, वैवाहिक बलात्कार, घरेलू हिंसा, तलाक के बाद वित्तीय गुजारा भत्ता, बच्चों की अभिरक्षा जैसे मुद्दों पर और हिंसा के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने वाले कानूनों के बारे में जागरूकता की कमी महिलाओं को अपने ऊपर होने वाले हिंसात्मक व्यवहारों के खिलाफ खामोशी तोड़ने से रोकती है। महत्वपूर्ण हितभागी जैसे पुलिस अभी भी घरेलू हिंसा को एक निजी मामला मानते हैं। ये एक बड़ी गलती है। अगला कारण है कि महिलाओं और लड़कियों के साथ पुलिस और कानून व्यवस्था द्वारा असंवेदनशील व्यवहार। ये सबसे गलत बात है। उदाहरण के तौर पर बात सामने आती है कि पुलिस महिलाओं की शिकायत दर्ज नहीं करती, खास तौर से तब जब वो समुदाय के किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा सताई गई हो। घरेलू हिंसा के मामलों को गंभीरता से नहीं लिया जाता और हमेशा महिला को ही दोष दिया जाता है। कई बार पुलिस शिकायत दर्ज कराने वाली महिलाओं को ही तंग करने लगती है। एक और कारण सामने आता है कि न्याय मिलने में देरी होना। इस बात को एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। न्यायालय में मामलों का कई सालों तक खींचते रहना, कानूनी प्रक्रियाओं में बहुत समय लगाना और बहुत कम ही मामलों में अपराधी को सजा मिलना, ये सभी कुछ ऐसे कारण है जिनसे महिलाओं में हिंसा के मामलों में आवाज उठाने या कानूनी सहायता लेने का साहस नहीं हो पाता और वो हिंसात्मक परिस्थितियों में रहती जाती है। कहने का आशय यह है कि समाज में इस बात की जागरूकता जरूर होनी चाहिए कि सभी महिलाओं के साथ हिंसा का जोखिम बना रहता है, महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा सदैव दिखाई नहीं देती। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मौखिक हिंसा शारीरिक उत्पीड़न का रूप भी ले सकती है। कुछ विशिष्ट संकेतों, लक्षणों, व्यवहारों तथा जीवन की स्थितियों के बारे में सचेत रहकर आप खतरों से घिरी हुई या हिंसा का सामना कर रही महिलाओं की पहचान कर सकते हैं। ये कुछ खास बातें, अच्छी अच्छी बातें मैंने आप तक पहुंचाई। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम सबको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। इस कड़ी में और भी बातें शेष हैं, वो बातें मैं आप तक पहुंचाऊंगा जरूर। फिलहाल अपने शब्दों पर यहीं विराम लेते हुए मैं आपसे लेता हूं अनुमति। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, महिलाओं का सम्मान करिए, उनको इज्जत दीजिए, उनका ख्याल रखिए। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। नमस्कार।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Film making एक creative field है और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है. तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में. यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in.
2: The world is here.

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को अजीत का नमस्कार
2: और विमलेश का भी नमस्कार। श्रोताओं, आप लोगों द्वारा भेजे गए पत्र और संदेश सचमुच हमारा उत्साह बहुत बढ़ाते हैं।
0: और श्रोताओं, इसलिए हम और अधिक प्रयास करते हैं कि उमंग कार्यक्रम को कैसे और अधिक रोचक बनाया जाए।
2: तो इसी प्रकार से हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए और
0: संदेश के साथ साथ सुविचार भी भेजते रहिए। तो आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
2: हमारा पहला प्रश्न था,
0: हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, उनका नाम और उपनाम क्या है?
2: इसका उत्तर है, मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। उनका असली नाम था श्री धनपत राय श्रीवास्तव।
0: और श्रोताओं, अब हमारा दूसरा सवाल था, मोहनदास करमचंद गांधी को दो उपाधियां मिली थी, राष्ट्रपिता और महात्मा, ये नाम किसने दिए थे?
2: तो साथियों, इसका सही उत्तर है, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और महात्मा की उपाधि दी थी महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
0: जी, हमारा तीसरा प्रश्न था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने लिखा था?
2: तो इसका सही जवाब है, महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख लिखा था।
0: और अब हमारा चौथा प्रश्न था कि किस राज्य या संघ राज्य को फलों की टोकरी कहा जाता है? आपके विकल्प थे उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, गोवा और हिमाचल प्रदेश।
2: तो साथियों, इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश।
0: जी हाँ, हिमाचल प्रदेश को फलों की टोकरी भी कहा जाता है। और हमारा अंतिम प्रश्न था श्रोताओं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष और सरदार का विशेषण किसने दिया था?
2: तो इसका सही उत्तर है साथियों, महात्मा गांधी जी ने बारडोली सत्याग्रह में अपने महान संगठनात्मक कौशल के लिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार और लौह पुरुष की उपाधि दी थी।
0: तो श्रोताओं, आइए, ये तो हुए पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो आइए अब सुनते हैं आज का सुविचार।
2: तो आज का सुविचार है, परिश्रम करने की उम्र में यदि आराम करेंगे तो आराम करने की उम्र में परिश्रम करना पड़ेगा।
0: परिश्रम करने की उम्र में यदि आराम करेंगे तो आराम करने की उम्र में परिश्रम करना होगा। और ये सुविचार हमें भेजा था ग्राम खकल, तहसील कोंच, जिला जालौन, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से ठाकुर दीपक सिंह गुर्जर ने।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी।
0: और श्रोताओं, हमें संदेश जिन श्रोताओं ने भेजा था उनके नाम अब इस प्रकार से हैं, ग्राम पजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, श्रीमती कल्पना चंसौलिया,
2: राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण।
0: यवतमाल विदर्भ यानी महाराष्ट्र से संतोष खड़ से और विनोद खड़ से,
2: करगी रोड, कोटा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से एकता गुप्ता, उषा, ज्ञानचंद्र गुप्ता, आस्था, अभय, जयदीप गुप्ता,
0: और अपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान, अरजान, अबान और परिवार के अन्य सभी सदस्य गण।
2: तो आइए अब सुनते हैं आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न। प्रश्न है,
0: संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है?
2: प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं,
0: संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है?
2: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे चिर परिचित नंबर 8800440559 पर।
0: और हमारा ईमेल भी याद रखें, यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप हमारे प्रश्नों के उत्तर या अपना संदेश भेज सकते हैं।
2: तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है लंका विजय भाग दो।
0: जी हाँ, पिछली बार आपने सुना था भाग एक
2: जी।
0: और अब प्रस्तुत है भाग दो।

0: अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से रावण एकदम टूट गया, विलाप करने लगा, मूर्छित हो गया। होश आया तो उसकी दशा पागलों जैसी थी, क्रोध से बिलबिलाता हुआ।
1: लंका अनाथ हो गई, अब उसका कोई सहारा नहीं, अब मैं स्वयं रणक्षेत्र में जाऊंगा।
0: लक्ष्मण के साथ वानर सेना भी महल में प्रवेश कर गई थी। उनके हाथों में चलती हुई मशालें थी। वानरों ने लंका में जहां तहां आग लगा दी, अन्न भंडार फूंक दिए, शस्त्रागार जला दिया, मार काट मच गई, जो भी सामने पड़ा मारा गया। कंपन, प्रजंघ, यूपाक्ष, कुंभ मारे गए। हनुमान ने निकुंभ, देवांतक और त्रिशरा को मौत की नींद सुला दिया। अंगद ने नरांतक का काम तमाम कर दिया। लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट डाला। राक्षस सेना हाँक खड़ी हुई। रावण के पास अब कोई विकल्प नहीं था। युद्ध नाद हुआ।

0: अकेला बचा रावण युद्ध के लिए निकला। फुक्कारते हुए हन कुचले सांप की तरह वो जिधर मुड़ता भगदड़ मच जाती। वानरों को भागते देख लक्ष्मण आगे आए, धनुष बाण लिए, रावण के सामने अभेद्य दीवार की तरह खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में विभीषण वहां पहुंच गए। उसके बाद राम उनके सामने रावण की एक न चली। विभीषण को राम की सेना में देख रावण उबल पड़ा। उसके लिए ये देशद्रोह था, छोटे भाई का विश्वासघात। उसने विभीषण पर निशाना लगाया। लक्ष्मण ने वो बाण बीच में ही काट दिया। उसने दूसरा घातक बाण चलाया। इस बार लक्ष्मण बीच में आ गए। उन्होंने विभीषण को अपने पीछे छिपा लिया। बाण लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए, गिर पड़े। राम ने ये देखा, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं, आग बरसने लगी। उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव की निगरानी में छोड़ा और रावण को चुनौती दी। कहा,
1: रावण, काल तुझे मेरे सामने ले आया है। आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी। तेरा अंत निश्चित है।
0: उधर हनुमान लक्ष्मण को उठाकर रण क्षेत्र से दूर ले गए। वैद्य सुषेण को बुलाया। हनुमान संजीवनी बूटी लाए। चिकित्सा शुरू।

हुई। धीरे धीरे रक्त का रिसाव बंद हो गया, घाव भर गया, संजीवनी का प्रभाव चमत्कारी था। सुग्रीव ने लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना राम तक पहुंचाई। वो सिंह की भांति रावण पर टूट पड़े।

राम रावण युद्ध भयानक था। शस्त्रों की गति से कपा देने वाली ध्वनियां निकल रही थी। हवा थम गई थी। सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। शस्त्रों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी। गड़गड़ाहट थी, थर्रा देने वाली। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। कोई एक रत्ती भी पीछे खिसकने को तैयार नहीं। कुछ ही देर में लगा कि युद्ध समाप्त होने को है। दोनों पक्ष के योद्धा हाथ बांधकर खड़े हो गए। छोटे छोटे युद्ध थम गए। सबकी नजरें राम और रावण पर थी। सबकी आंखें फटी रह गईं। पलकें झुकना भूल गईं। उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन महासंग्राम समाप्त नहीं हुआ था। रावण का एक बाण राम को लगा। उनके रथ की ध्वजा कटकर गिर पड़ी। राम ने प्रहार किया। बाण रावण के मस्तक में लगा। रथ की धारा बह निकली। बीच में युद्ध कुछ पल के लिए रुका। रावण अपने महल चला गया। घोड़े और रथ बदलने राम को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। युद्ध फिर शुरू हुआ। अब उनके रथ एक दूसरे के सामने थे। योद्धा आंखों में आंखें डालकर देख सकते थे। घोड़ों के मुंह मिल गए थे। राम के बाणों ने रावण के रथ का मुंह मोड़ दिया। ये पराजय का संकेत था। रावण हिम्मत हारने लगा। जब तक वो रथ घुमाता, राम का एक बाण उसके पार निकल गया। रथ मुड़ा, लेकिन रावण के हाथ से धनुष छूट गया। वो पृथ्वी पर गिर पड़ा, मारा गया। बची हुई राक्षस सेना हड़बड़ा गई, जान बचाकर भागी।

0: उनका दिशा ज्ञान शून्य हो गया। जिसे जिधर अवसर मिला भागा। कुछ राक्षस वानर सेना की ओर दौड़ पड़े, कुछ भागते हुए समुद्र में जा गिरे। लंका का विजय अभियान पूरा हुआ। राम की जयकार होने लगी। कुछ समय पूर्व का रण क्षेत्र एकदम बदल गया। शस्त्रों की टंकार की जगह किलकारियों ने ले ली। वानर सेना उछल कूद करने लगी। समुद्र से ठंडी हवा आ रही थी। शस्त्रों से उत्पन्न गर्मी वो अपने साथ बहा ले गई। कोलाहल तुमुल नाद में परिवर्तित हो गया। प्रसन्नता सर्वव्याप्त थी। रण क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति दुखी था। शोक से व्याकुल विलाप करता हुआ अपने भाई के मृत शरीर के पास खड़ा।
1: बंधु
2: मित्र विभीषण, शोक मत करो। रावण महान योद्धा था। उसकी अंत्येष्टि महानता के अनुरूप होनी चाहिए। मित्र, मृत्यु सत्य है, उसे स्वीकार करो।
1: प्रभु।
0: राम ने एक एक वानर का आभार माना। सुग्रीव को गले लगा लिया। लक्ष्मण से विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करने को कहा। चाहते थे कि रावण की अंत्येष्टि के बाद राज तिलक हो, उसमें विलंब न किया जाए। उन्होंने हनुमान को बुलाया, अशोक वाटिका जाने का निर्देश दिया।
2: हनुमान।
3: प्रभु,
2: ये संदेश आपको ही सीता तक पहुंचाना है।
3: जैसी आज्ञा प्रभु।
2: उन्हें लंका विजय का समाचार दीजिए। उनका संदेश लेकर शीघ्र आइए।
3: प्रभु।
0: विभीषण के अंत्येष्टि से लौटने तक उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी थी। लक्ष्मण राजमहल पहुंच गए थे। वानर स्वर्ण कलश में समुद्र का पानी ले आए थे। लक्ष्मण विभीषण के पास गए। उन्हें साथ लेकर राज सिंहासन तक आए। सोने का चमचमाता हुआ सिंहासन, रत्नों मणियों जटित। समुद्र जल से उन्होंने सभासदों के सामने विभीषण का अभिषेक किया। अब विभीषण लंका के राजा थे। इस बीच हनुमान अशोक वाटिका से लौट आए। राम के पास उन्होंने कहा,
3: प्रभु, माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर प्रसन्न हुई।
2: हनुमान,
3: वे आपसे मिलने के लिए अधीर हैं।
2: सीते,
0: तब तक विभीषण वहीं आ गए थे। राम उनकी ओर मुड़े, कहा,
2: लंकापति
3: प्रभु,
2: सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में है, उन्हें यहां लाने की व्यवस्था की जाए।
3: जो आज्ञा।
0: वानर सेना चुहल कर रही थी, अटखेलियों में लगी थी। राम का निर्देश सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई। सुग्रीव, जामवंत और नल नील भी उत्सुक थे। अंगद को प्रतीक्षा थी। हनुमान को छोड़कर किसी ने सीता को नहीं देखा था। सीता आई तो सबको अपनी कल्पनाओं से अधिक लगी।

सुंदरता में एक वर्ष बाद पति से मिलन की प्रसन्नता शामिल थी। कष्ट इतिहास हो गया था।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत NCERT शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल।
1: आइए अब सुनते हैं दूसरा कार्यक्रम, लेकिन कार्यक्रम से पहले एक खास बात।
2: श्रोताओं, आप जानते हैं कि भारत अब चंद्रमा पर पहुंचने वाला विश्व का चौथा देश और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 की सफलता से सारे विश्व में भारत की सराहना हो रही है।
1: तो इसी क्रम में आइए सुनते हैं चंद्रमा पर ही एक कार्यक्रम, यानी एक विज्ञान गीत।
2: और इस विज्ञान गीत का शीर्षक है चंदा की छुट्टी।

0: तो श्रोताओ कैसा लगा? ये कार्यक्रम चंदा की छुट्टी?
1: जरूर अच्छा लगा होगा, है ना? तो अब हमारे प्रसारण का आज का समय यही समाप्त होता है। तो अजीत
0: और विमलेश को
1: तकनीकी टीम,
0: तनु,
1: जगबंधु,
0: मीनाक्षी,
1: कुसुमलता,
0: सौम्या,
1: विकास
0: और मयंक के साथ आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की

जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं बताइए। देखिए सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
3: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: क्या हुआ बहू, इतनी खांसी?
2: माँ जी, मुझे टीबी है।
1: टीबी और छुपा कर रखा?
2: माँ जी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दें।
1: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरें। टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
3: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
4: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
5: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
6: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
4: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम,

0: मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और ये कारवां बनता गया। राम राम दोस्त, आप सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ। वो गगन हमेशा जो गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की हम कोशिश करते हैं सिर्फ अपने सुरू शारदा 90.8 FM पर। यह है आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। सामुदायिक रेडियो स्टेशन का मतलब यही कि यहाँ पर ज्ञान विज्ञान की बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, ये तमाम बातें हर रोज हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक, और हर रोज सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूँ आपके साथ। चलिए जनाब, आज कुछ खास है। जब मैंने समुदाय का जिक्र किया है तो जाहिर सी बात है कि आपकी बातें होंगी, हमारी बातें होंगी। शारदा विश्वविद्यालय का ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन है तो यहाँ पर स्टूडेंट की भी बातें होंगी। समुदाय यानी कि समुदाय जोड़ने का काम करता है। समुदाय जहाँ एक छत के नीचे अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग कल्चर है, उस कल्चर के बीच में जब हम जाते हैं, हमारे टीचर जाते हैं, प्रोफेसर जाते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलता है। जाहिर सी बात है कि इस कार्यक्रम को हमने एक नाम दिया है और जो मेरे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं उन्होंने बहुत ही खूबसूरत नाम दिया है, राबता। राबता यानी कि एक जुड़ने का जरिया, कम्युनिटी कनेक्ट के जरिए समुदाय को जोड़ने का ये सफर है। सफर है तो जाहिर सी बात है कि इस सफर में कुछ हम सफर भी होंगे। जी हाँ, कुछ हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बड़ी ही शख्सियत, बहुत खूबसूरत शख्सियत आज हमारे बीच में है। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगा, उनका परिचय मैं आपको देना चाहूँगा। मेरे बीच में है एडवाइजर हैं आप कम्युनिटी कनेक्ट शारदा विश्वविद्यालय से, साथ ही साथ शिबानी फाउंडेशन के आप फाउंडर हैं, आप हैं डॉक्टर बर्नाली खरा मैम। तो मैम, सुरु शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू गगन जी, थैंक यू एवरीवन जिसको मेरी आवाज सुनाई दे रहा है 90.8 FM से। और मैं इस कम्युनिटी कनेक्ट के जरिए मैं कुछ बात अपना शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे अपने स्टूडेंट को, अपने और कम्युनिटी को जो जहाँ से सुन रहा है मेरी आवाज़, उन तक मेरी आवाज़ पहुँचना चाहिए ये समुदाय को हमें ऊपर जाने के लिए।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। दोस्तों, ये जो सफ़र है यूं ही चलेगा, कम शब्दों में बहुत अच्छी बातें कह दी हैं कि इस सफ़र को हम आगे लेकर जाएंगे और हम आप ही की बातें करेंगे। और मेरे साथ मेरे जो दूसरे ख़ास मेहमान हैं, आप हैं कम्युनिटी कनेक्ट हेड डॉक्टर निमी अग्रवाल मैम। तो मैम, आपका भी सुरु शारदा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी, ये एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, हमारी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। शारदा रेडियो जो कि वॉइस ऑफ शारदा यूनिवर्सिटी है, जिसके माध्यम से आज हम बातचीत करेंगे कम्युनिटी कनेक्ट के बारे में।
0: और तीसरी जो शख्सियत है उनका मैं नाम अभी नहीं लूंगा, मैं तब बुलाऊंगा उनको जब हमारी उनसे खुद डायरेक्ट बात होगी। तो ये जो यूँ कहना कि पर्दे में रखा हुआ है उस खास मेहमान को आप जानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, थोड़ा तो आपके दिमाग को जोर देना ही चाहिए। चलिए, आपके बारे में हम बाद में बात करेंगे, वो अभी थोड़ा वेटिंग में चल रही है। लेकिन कम्युनिटी कनेक्ट का जब हमने जिक्र किया है तो जिक्र हो रहा है एक समुदाय का, जिक्र हो रहा है आपकी बातों का, जिक्र हो रहा है UGC क्या कहती है, विश्वविद्यालय क्या कहता है, किस क्राइटेरिया के तहत हम लोग मैदान में जाते हैं, स्टूडेंट्स भी मैदान में जब जाते हैं कि तो उनकी जो एनर्जी है वो क्या रहती है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या बातें होती हैं, यही सारी बातें करने के लिए मेरे साथ मेरे एक्सपर्ट के तौर पर यहाँ विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर बर्नाली खरा मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस कम्युनिटी कनेक्ट के बारे में आपने क्या अब तक देखा है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप थोड़ा हमारे श्रोताओं को बता सकें तो प्लीज़ इसके बारे में बताएं।
1: मैं कम्युनिटी कनेक्ट का एडवाइज़र भी हूँ और मेरा अपना फाउंडेशन भी है, शिवानी फाउंडेशन
0: जी।
1: तो मैं वहाँ पे ऐसे कम्युनिटी से मिलती हूँ जहाँ पे आपको और कुछ नज़ारा दिखेगा, वहाँ का लोगों का प्रॉब्लम, वहाँ लोग कैसे रहते हैं। मुझे लगता है मेरे साथ साथ सबको वहाँ तक पहुँचना चाहिए
0: जी।
1: और मेरा अपना एक स्कूल भी है वहाँ पे अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन के लिए, तो वो स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं अभी, उनको फ्री में मैं सारा एडुकेशन देती हूँ वहाँ पे। और मुझे लगता है ये बच्चों भी उस दुनिया तक पहुंचना चाहिए जहां पे ऐसे लोग रहते हैं।
0: जी, आप जो जिक्र कर रही हैं वहाँ की जगह है कहाँ?
1: ये हमारे एरिया में है, ज्यादा दूर नहीं है, ये इस शहर से थोड़ी सी दूरी में,
0: ग्रेटर
1: नोएडा के पास में कासना एरिया है।
0: हाँ जी,
1: इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे मजदूर आते हैं बाहर से, जो माइग्रेंट लेबर है ज्यादातर, उनका एक एक घर का एक एक कहानी है।
0: नहीं मैं समझ सकता हूँ, ये सक्सेस स्टोरीज हम बोलते हैं, उसको नजदीकी से जब जानेंगे समझेंगे तो चीजों को समझ में आएगा। तो क्या क्या स्टोरीज वो रहती हैं, थोड़ा सा अगर हम संक्षेप में बताएं।
1: वो लोग ऐसे दुनिया में जीते हैं, उनके लिए खाना ही सब कुछ है, उससे आगे वो लोग सोच ही नहीं सकते जो हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और मुझे जो लगता है जो शिक्षा सही से नहीं मिलेगा तो इसको आगे नहीं ले जा सकते। ये समुदाय को आगे जाने के लिए मुझे लगता है मतलब शिक्षा बहुत जरूरी है।
0: बेशक मैम, और इसीलिए कहा जाता है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, विद्या आपको पात्रता लेकर आती है, विद्या आपको धन देती है, धन से धर्म आता है और धर्म से सुख आता है। तो हम सब यही कामना करते हैं कि सब पढ़ें, आगे बढ़ें। तो इसके बारे में मैम हम जरूर चर्चा भी करेंगे, और अगर आप हमें अलाउ करेंगे तो निश्चित तौर पर हम आपके शिबानी फाउंडेशन जरूर जाना चाहेंगे, लोगों से मिलना चाहेंगे। और मैं समझता हूँ तभी
1: जाकर हमारा है, मेरे साथ साथ इस अंधेरे में एक एक दिया कभी भी जलाएंगे सब लोग, तो और आगे बढ़ जाएंगे, हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं।
0: ज्योत से ज्योत जलाते चलो, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। हमारे साथ जो हमारे दूसरी गेस्ट हैं, आप हैं डॉक्टर निमी अग्रवाल, जो कि हेड है कम्युनिटी कनेक्ट की। मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: तो आप भी कुछ हमें बताएं कि जब आप मैदान में जाते हैं तो किस तरीके के लोगों से आप मिलते हैं, कम्युनिटी कनेक्ट का जो एक उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य रहता है, किस तरीके से स्टूडेंट्स को आप इन्वॉल्व करती हैं?
2: बिल्कुल गगन, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि जब हम कम्युनिटी में जाते हैं तो क्या चैलेंजेस या क्या बच्चे हमारे ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना यहाँ पर ये ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ कि कम्युनिटी कनेक्ट है क्या
0: जी,
2: और शारदा विश्वविद्यालय का क्या उसके तरफ रुख है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, ये जो एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक मिशन है।
0: क्या बात,
2: एक मिशन है जो शारदा यूनिवर्सिटी अपना चलाती है कम्युनिटी कनेक्ट के नाम से, राइट। तो बेसिकली क्या है कि जो इसका जो बेसिक फिलॉसफी है कम्युनिटी कनेक्ट की, वो ये है कि जो हम सीखते हैं ना वो सिर्फ हमारे काम आता है, सोसाइटी के नहीं, लेकिन हम कम्युनिटी कनेक्ट के तहत बच्चों को सेंसिटाइज करते हैं, उनको अवेयर करते हैं अबाउट द कम्युनिटी, राइट। तो सेंसिटाइज और अवेयर करने से उससे उनको है ना सोसाइटी से कनेक्ट करते हैं, ताकि उनको सोसाइटी के जो और चैलेंजेस हैं वो भी उनको समझ में आए। तो यही सोच जो है शारदा कम्युनिटी कनेक्ट के हैं, ये एक ऐसा ब्रिज है जो नॉलेज को एक्शन में बदल देता है, राइट। केवल वो नॉलेज हमारे अपने पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि व्हाट वी आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी, राइट। और इसमें यूजीसी भी यही कहता है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो टीचिंग रिसर्च करते ही हैं, लेकिन व्हाट दे आर सर्विंग बैक टू द सोसाइटी, तो उसी के तहत भी ये कम्युनिटी कनेक्ट हमारा पर्पस सॉल्व करता है, उसको सर्व करना, सोसाइटी को सर्व करना, उसके बारे में बात होती है, ठीक है ना। उसके अलावा क्या है, कम्युनिटी कनेक्ट का जो मतलब है वो ये है, यूनिवर्सिटी और समाज के बीच एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाना, राइट। क्योंकि जब किताबों की लाइंस ना जिंदगी की लाइन से मिलती है ना, तभी बनता है एक असली एजुकेशन। ये एक फंडामेंटल फिलॉसफी है,
0: नहीं, बिल्कुल आपने
2: कि
0: सही कहा।
2: हाँ, नॉलेज को ना, जो किताबों की नॉलेज है उसको मैं जिंदगी से जब तक नहीं जोड़ेंगे ना, तो असली एजुकेशन जो है ना वो किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, क्लासरूम तक सीमित नहीं होनी चाहिए, उन्हें हमें पंख देने हैं, उन्हें हमें समाज से जोड़ना है। और आजकल अगर आपको पता ही है जेन जी के हमारे जो है स्टूडेंट्स हैं, तो उनको तो बहुत जरूरी है कि उन्हें हमें समुदाय से कनेक्ट करें।
0: देखिए, जो आपने कहा कि जेन जी का जिक्र किया, मैं समझता हूँ आप समझ रहे हैं, एक नया वर्ड है किसी के लिए, तो थोड़ा अगर आप इसको विस्तार दे सकें तो आप मुझे बताइए।
2: जेन जी मतलब बेसिकली क्या है, जो जनरेशन है उनकी बॉर्न डेट और ईयर यूथ, राइट। तो दोज हु हैव बॉर्न आफ्टर 2010 और 2014 उनको जेन जी कहा जाता है।
0: सही जवाब।
2: तो जो है उन बच्चों का सोचना और हम लोग सोचने में थोड़ा फर्क है,
0: जिसको आम भाषा में हम सुनते हैं कि एक जनरेशन गैप आ गया,
2: जनरेशन गैप,
0: आपकी सोच पुरानी है, हम आज का यूथ है। तो मैम शुक्रिया आपने इस पर रोशनी डाली, क्योंकि कई लोगों को शायद इसके बारे में जानकारी न हो। लेकिन मैं एक और बात आपसे थोड़ा सा जानना समझना चाहूंगा कि जब लोगों को आप एकत्रित करते हैं, जब हम भी मैदान में जाते हैं कम्युनिटी कनेक्ट के बीच प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि एक बार की एक मीटिंग में कोई क्राउड हमारे सामने नहीं आता है, वो कहीं ना कहीं डर होता है, घबराहट होती है, उनको ये भी लगता है कि आप अपना काम कर रहे हैं हमारे लिए क्या। तो नो डाउट एक फ्यूचर प्लानिंग है। अब यहाँ जो प्लानिंग को लेकर चलते हैं, नो डाउट कि शिबानी फाउंडेशन आप अपना काम कर रहे हैं, शारदा विश्वविद्यालय भी अपना काम कर रहा होता है, सिर्फ एक मीटिंग में वो काम मुझे लगता है सफल नहीं हो पाता होगा जो हमारा उद्देश्य रहता है। तो जो आप मैदान में उतर हैं, तो ये जो चैलेंजेस की बात है इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप मुझे बताएं, तो किस तरीके की क्राउड मिलता है, कैसे लोग मिलते हैं, क्या उनके सवाल होते हैं?
2: हाँ, चैलेंजेस तो बहुत हैं। चैलेंजेस वन वे नहीं है, टू वेज हैं। एक तो चैलेंजेस यही है हमारे सामने कि बच्चों को उस चीज को समझाना कि हम उन्हें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या कनेक्ट करना चाह रहे हैं, वो परसेप्शन उनके दिमाग में, वो विजन उनके दिमाग में सेट करना। दूसरा, जहां हम कम्युनिटी में लेके जा रहे हैं उनके वो आइस ब्रेकिंग करना कि जहां वो बोलें कि हाँ ये इश्यूज हैं। जनरली जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग होते हैं और जो अपने काम कर रहे होते हैं वो इतना समय देना नहीं चाहते कि जहां वो बातचीत करें और अपनी प्रॉब्लम को जाते ही एकदम से ओपन अप करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि हमें उनसे एक नहीं, दो नहीं, तीन बार मिलना पड़ता है, एक विश्वास उनके साथ कनेक्ट करना पड़ता है, विश्वास डेवलप करना पड़ता है, ताकि वो अपने जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं वो हमको शेयर कर सकें।
0: मेरे साथ डॉक्टर बर्नाली खरा मैम हैं दोस्तों। तो मैम मैं इस संबंध में आपके व्यूज भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आप एक फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं और मैं समझता हूँ फाउंडेशन फिर अपना काम करता है। हाँ। लोगों को आप अवेयर कर रहे हैं, आप एजुकेशन उनको दे रहे हैं, उनको यूं कहें कि एक वर्कशॉप आयोजित कर दे रहे हैं, या कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि शारदा विश्वविद्यालय उन स्टूडेंट्स को लेकर आता है और यहाँ पर एक छोटी छोटी वर्कशॉप्स भी हो रही होती हैं। तो इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे जो मैम ने अभी बातें रखी?
1: नहीं, या तो स्टूडेंट के लिए कम्युनिटी कनेक्ट मुझे जो लगता है सिर्फ चैप्टर में नहीं है, ये प्रैक्टिकल ग्राउंड में उनको जाना चाहिए, उनको समझना चाहिए इस दुनिया के बाहर और लोग कैसे जीते हैं, उनका इकोनॉमिक कंडीशन, उनका हेल्थ कंडीशन, उनका हर दिन का कैसे चलता है, वहाँ रोजगार है, कैसे वो मैनेज करते हैं, आप कितना हैप्पी रहते हैं वो लोग, ये सब चीज़ उनको शेयर होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया से वो दुनिया फर्क है,
0: बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि हमने देखा है कि वो झुग्गी झोपड़ी में ही रह रहे होते हैं।
1: हाँ।
0: शायद अगर जब बदरा आते हैं तो वो दुआ करते हो कि ये पानी ना बरसे। हाँ, अगर पानी बरस गया तो मेरी झोपड़ी का क्या होगा। तो ये बहुत चैलेंजेस है।
1: मैंने बोला पहले भी, उनके लिए बस फूड ही सब कुछ है, बस खाने पीना जीना, बस उससे आगे कुछ सोच ही नहीं सकते ऐसे ही। और उनके पास बहुत सारे जिम्मेदारी है, बीमार, हर घर का एक एक स्टोरी होती है वहाँ पे।
0: बेशक, बेशक।
1: आप जितना दिन जाएंगे, एक एक घर जाएंगे, तो एक एक स्टोरी डेली निकाल के आएगा वहाँ पे।
0: बेशक मैम।
1: तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे जाने।
0: मैं ये कहूँगा कि मैं खुलकर आपको एक अपनी बात रख रहा हूँ कि आप हमें निमंत्रण दें, हम आपके साथ चलना चाहेंगे।
1: जरूर, जरूर,
0: ताकि हम इस तरह की स्टोरीज को कवर कर सकें, अपने रेडियो एफएम पे लेकर आ सकें, जो शिबानी फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग आपको ऐसे मिलते हैं। तो अगर आप कहें तो दोस्तों तो हम तीसरे मेहमान को बुला लें, क्योंकि बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं। अगर हमारी बातें खत्म हो गई तो वो नाराज भी हो सकती है और हो सकता है खफा भी हो जाए, लेकिन हम अपने मेहमान को खफा नहीं करेंगे, क्योंकि बातों का सिलसिला बहुत ज्यादा है, बहुत अथाह भंडार है, खजाना ही खजाना है हमारे पास। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथ मेरे खास मेहमान हैं और आपके साथ मैंने बहुत सारे शोज किए हैं, आपके साथ ग्राउंड में मैं गया हूं। तो आप हैं मेरे साथ, आप डायरेक्टर हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर की, डॉक्टर पारो कंट्रोल सक्सेना मैम। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार गगन, और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपने जैसा कहा कि जो रेडियो FM और हमने पहले भी कई शो करे हैं अपने एक्टिविटीज़ को लेकर, और यहाँ पे हर बार आना एक नया अनुभव रहता है। और सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं को स्नेहपूर्ण नमस्कार करना चाहूँगी और धन्यवाद देना चाहूँगी गगन और उनकी टीम का, जिन्होंने हमें यह अवसर प्रदान करा।
0: तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ऐसा नहीं था कि मैं आपको बुलाता नहीं, और ऐसा नहीं है कि मेरे पास सवाल नहीं है आपके लिए, मेरे पास सवाल अभी बाकी है, कह सकते हैं दोस्तों कि पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि पठन पाठन की बातें हो रही हैं, ज़िंदगी को समझने की बातें हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि विश्वविद्यालय की कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। UGC अपना एक क्राइटेरिया बनाता है और उसके तहत जैसे कि हमने कहा कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी बढ़ चढ़ कर काम कर रहा होता है, शारदा विश्वविद्यालय अपना काम कर रहा है, और यही एक वजह है कि जब स्वास्थ्य का मैम ने जिक्र किया तो शारदा अस्पताल भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, उस चीज़ को भी हम नहीं भूल सकते हैं। तो मैम अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो मकसद है इसके पीछे हमारी क्या सोच है, क्या विजन है। अभी मैम से मेरी बातें हो रही थी, चूँकि हमारे शारदा विश्वविद्यालय के जो चांसलर सर हैं वो क्या सोचते हैं उनके बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मकसद है वो विश्वविद्यालय का क्या मकसद है, हम कहाँ तक पहुँचें, कहाँ तक जाएं, उनको आगे तक भी लेकर आएं, चाहे वो एजुकेशन की बात हो उनको यहाँ करिकुलम एक्टिविटीज़ की हो, बात हो हेल्थ की, तो कुछ और आप हमें बताएं।
3: जहाँ आपने ये सूत्र छोड़ा मैं वहाँ से इसको उठाती हूँ। जैसे आपने कहा कि शारदा विश्वविद्यालय या किसी भी विश्वविद्यालय को अगर हम लेकर चले, और स्पेसिफिकली आज जो जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, तो उनका जो एक मकसद है और स्पेसिफिकली शारदा विश्वविद्यालय का, ना सिर्फ अच्छे इंजीनियर और डॉक्टर बनाना है बल्कि अच्छे नागरिक बनाना है। तो वो जो एक स्पिरिट और जो एक फीलिंग ऑफ एबल सिटीजनशिप जो हम बात करते हैं, तो ये जो मकसद है उसका जो सीट है ये उस चीज़ को लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से है। और जैसे आप बात करें कि वेरियस रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, UGC है और NAC है और अदर इस तरह की बॉडीज़ हैं, पर यहाँ पे दो चीज़ों का मैं आपके सामने जो है विवरण करना चाहूँगी कि दो चीज़ें जो बहुत महत्व रखती हैं आजकल के टाइम पे। एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का मिशन
0: जी वर्ष 2047 तक जी,
3: तो कुछ क्योंकि आप इसको एक गमले की तरह ले सकते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल हैं, तो उस तरह का एक ब्रांच आउट हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का जो मिशन है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जेंडर इनइक्वालिटीज ना हो, जो असमानताएं हैं
0: असमानता
3: वो ना रहे, और सबको एक क्वालिटी एजुकेशन हम प्रदान कर पाए, राइट। और इनका जो जेनेसिस है, क्योंकि ये तार से तार जुड़ता जाता है, वो जाता है, मैं आपको लेके जाऊंगी 2016 1 जनवरी को, जहाँ पे UN ने 17 SDGs जिसको हम बोलते हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करी थी। तो जो हमारा चाहे हम शारदा सोशल बिजनेस सेंटर की स्थापना की बात करें या हमारे कम्युनिटी कनेक्ट की बात करें, तो इन सब के जो तार हैं वो जुड़ते हैं हमारे भारतीय मिशन के साथ और हमारे वैश्विक मिशन के साथ, जहाँ पे हम इन दोनों चीज़ों की बातें करते हैं।
0: जी जी, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको विस्तार से हमें बताया, हमारे लिसनर्स तक बात पहुँचाई आपने, और मुझे एक नई चीज़ सीखने को समझने को मिली कि आपने जो मूल्यों की बात की, संस्कारों की बात की, वो कहीं ना कहीं आज गुम होती हुई नज़र आ रही है। और हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम एक भी विद्यार्थी को वो संस्कारों के साथ आगे लेकर जा पाएँ तो निश्चित तौर पर उसका जो योगदान होगा वो हमारे देश में होगा। डॉक्टर बर्नाली खरा मैम, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, नैतिक शिक्षा को जब आप देखते हैं तो कहाँ आप पाते हैं कि वो नैतिक शिक्षा जिंदा है या नहीं है, क्या हम उसको विश्वविद्यालय के माध्यम से आगे लेकर जा सकते हैं? हमारे यहाँ वर्कशॉप्स भी होती हैं, और जब आप ग्राउंड पर जाती हैं तो क्या आप महसूस करती हैं महिलाओं का वो दुख दर्द, क्योंकि बीइंग ए लेडी होने के नाते दो चीज़ें मैं आपसे समझना चाहूँगा, तो प्लीज़ आप बताएं नैतिक शिक्षा।
1: प्रधानमंत्री का जो मन की बात है
0: जी,
1: जो ये जो ब्रिज गैप क्लियर करना है, हमें गैप जो है उस सोसाइटी के साथ ही सोसाइटी की, तो मुझे लगता है अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इस सोसाइटी के साथ वो सोसाइटी जब तक कनेक्ट नहीं होगा, SDG के तहत हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इसको कैसे कैसे एक एक गोल हम पूरा कर सकते हैं।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: और
0: महिलाओं के क्या चैलेंजेस होते हैं? अच्छा,
1: महिलाओं का
0: उनसे मिलती हैं।
1: महिला अभी तक रूरल एरिया में मुझे ज्यादा फर्क नहीं लगता है, लोकल एरिया में मैं जब जाती हूँ उनके पास, अभी तक मैंने जो गांव विजिट किया हुआ देखा किसी के पास अभी तक मोबाइल नहीं है।
0: जी जी,
1: ऐसे भी देखा है। मैं आगे एक स्टिचिंग सेंटर खोलना चाह रही हूँ, तो उस गांव में हमने देखा है उनके किसी के पास अभी मोबाइल नहीं है, बोला यहाँ मोबाइल महिला के लिए नहीं है।
0: कहीं ना कहीं
1: अभी भी अंधेरा है ही वहाँ पे,
0: यानी कि पुरुष तो आगे बढ़ना चाहता है, महिलाओं को वो मोबाइल देते हुए भी डरते हैं।
1: हाँ, नहीं अभी तक वो देखा नहीं, वो सोच बदलना पड़ेगा। कोई पर जाके मैंने देखा है उनके पास ना आधार कार्ड मतलब एडिट ना हुआ है, शादी के बाद वो पुराना ही आधार कार्ड है उनके पास, बेसिक चीजें सब नहीं, बाहर जाने नहीं देते है, अपनी बहू को बाहर जाने का भी मना है, बहुत सारे चीज मुझे
0: चैलेंजेस है जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं वो आ ही रहे हैं।
3: जैसा मैम ने कहा उसको आगे ले जाते हुए कई बार हमें लगता है कि जैसे आपने कहा गगन कि ये मानसिकता की बात है, राइट, तो एक ये एक मेंटल ब्लॉक भी है। दूसरा मैं कहूँगी यहाँ पे खुद औरतों को भी अपना एक स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी
0: क्या
3: है,
0: बात है? Nice.
3: तो हर बार हम दूसरे पक्ष को दोषी नहीं ठहरा सकते, जैसे अगर हम महिला और पुरुष की बात करते हैं, तो मैं आपको यहाँ एक उदाहरण के साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे जो हमारा शारदा सोशल बिजनेस सेंटर है वो महिला कारीगरों को साथ जोड़ के उनको बिहेवियरल ट्रेनिंग देता है कि कॉन्फिडेंस कैसे आपका बढ़े, आप कस्टमर से कैसे बात करें, और ये सारी जो महिलाएँ हैं माइग्रेंट वुमेन है और ये क्रोशे के काम में जो कढ़ाई होती है उसके काम में एंगेज है। तो एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी कि ऐसी मेरी एक महिला कारीगर से बात हो रही थी कि आप आइए हम शारदा में एक आपकी प्रदर्शनी लगाएंगे आपके काम की, जिससे आपके काम को एक पहचान मिलेगी। तो वो उनके पहले दिमाग में आया कि मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगी और दूसरा कि मेरे बच्चों को कौन रखेगा। तो मैंने उनसे फिर सवाल करा कि ये काम तो आप अपने पति से पूछ सकती हैं, एक दिन वो शायद घर पे रह ले। बोले मैंने कभी पूछा ही नहीं उनसे, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। तो ये बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जो भी हमारी महिला श्रोता है सुन रही है, कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी बात दूसरे तक रखें। हम एक परसेप्शन के साथ चलते हैं कि शायद दूसरा हमारी बात समझता है और वो इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा, जहाँ की बात होती है कि हमने अपनी बात उन तक रखी नहीं है।
0: जी जी, इस बात को अगर हम यूँ समराइज करें तो ये बात निकल कर सामने आती है कि बात करेंगे तभी बात बनेगी। बड़े से बड़े मसलों का हल हो जाता है जब आप बात करते हैं, अदरवाइज आप घुट जाते हैं, आप परेशान हो जाती हैं। और जिस तरीके से मैम ने अपनी बात मन की बात हमारे साथ साझा की, तो मुझे लगा कि इससे एक बात यही समझ में आई कि हमें उनको जगाने की ज़रूरत है, उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता है, और ये आवश्यकता पूरी होती है एक कम्युनिटी कनेक्ट के माध्यम से। और यही एक उद्देश्य है कि हम लोगों के बीच में जाएं, स्टूडेंट्स को साथ लेकर जाएं, ताकि हम उनको बता पाएं, समझा पाएं, ताकि वो जान पाएं कि काश मैं भी कुछ मदद कर सकूं, काश मैं भी यहाँ जुड़ सकूं। हो सकता है उसके पास टैलेंट हो, वो गिटार अच्छा बजाता हो, क्योंकि जब बच्चे पढ़ पढ़ कर बोर हो जाते हैं तो हो सकता है वो गिटार भी सीखना चाहेंगे। और मैं समझता हूँ शारदा विश्वविद्यालय का एक कर्तव्य एनजीओ है मैम, वो भी बढ़ चढ़ कर काम कर ही रहा है। जब मैम, मैंने डॉक्टर बर्नाली खरा मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो किस तरीके का रहता है, स्टूडेंट्स कैसे हमारे साथ जुड़ते हैं, या उनको जगाना पड़ता है कि नहीं बेटा आप चलो हमारे साथ?
1: नहीं नहीं, बहुत इंटरेस्टेड है, मैं 2-3 बार उसको लेके गई ऐसे गांव में, तो स्टूडेंट काफ़ी इंटरेस्टेड है, मैं नहीं बोलूँगी स्टूडेंट जानना नहीं चाहते हैं। और आने के बाद भी उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, जो मैंने कोई कोई स्टूडेंट को मैंने बोलते हुए देखा है जो मैम ये दुनिया तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, मैं सोच रहा था जो मैं ही गरीब हूँ, लेकिन हमसे भी इतना गरीब लोग है, हम देख के मुझे अच्छा लगा ये सब चीजें।
0: और यही हमारा मकसद है कि उस चीज को दुख दर्द को आप जाने समझे। और बड़ी खूबसूरत लाइन है कि मेरा गम कितना ना कब।
1: प्यार से समझाओ तो बच्चे भी समझ जाते हैं, ऐसे नहीं है, दुनिया बदलेगा जरूर।
0: क्या बात है, दुनिया बदलेगा जरूर, हम छोटे कदमों से प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर मंजिल को पा ही लेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई बात आपकी तरफ से छूट रही है मैम तो आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज हम कार्यक्रम को आगे लेकर चलें।
3: अभी जो हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे तो उस उपलक्ष्य में, क्योंकि मैं भी एज ए वॉलंटियर जैसे मैम ने कहा शिवानी फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो हम जो अपने श्रोता जो हमारे सुन रहे हैं, एक तो हम उनसे चाहेंगे कि वो हमारे साथ जुड़ें, हमारी वेबसाइट जो है वो www.shivanifoundation.com है, और दूसरा हम ये चाहेंगे कि हम एक, जैसे आपने कहा कि एक अकेला नहीं जो है वो काफिला बनता और लोग साथ में जुड़ते जाते हैं, तो हम चाहेंगे कि इसमें हमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हमें सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनका सहयोग अगर किसी तरह से हमें मिल पाए, क्योंकि जैसे अंडर प्रिविलेज बच्चों की बात हो रही है या हमारे बच्चे जब कम्युनिटी में जाकर उन लोगों की दुविधा देखते हैं तो उस तरह के काफ़ी समस्याएं हैं जो शायद रिजॉल्व हो सकती हैं, लेकिन शायद उस तरह का जो एक पहल है वो नहीं ली गई। तो
0: बहुत बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर कोई हमसे जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ेगा। 01204060205 ये हमारा नंबर है। ठहराव के साथ मैंने इसलिए बताया, कभी कभी मैं भी श्रोता होता हूँ तो जब रेडियो प्रेजेंटर के नंबर में फड़फड़ सुनता हूँ तो मेरे वो सर से ऊपर चला जाता है, यानी कि 120 40 60 205 के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मेल के माध्यम से मेल जोल बढ़ा सकते हैं, 90.8fm@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं, और शारदा विश्वविद्यालय के जो दरवाजे हैं वो आप लोगों के लिए खुले हुए, आप कभी भी आइए, यहाँ का आप दौरा कर सकते हैं। तो मैम आखिर में मैं डॉक्टर निमी अग्रवाल जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो हमें बता रही थी कि जो एक विजन है, जो एक सोच है हमारे चांसलर सर की, वो क्या सोचते हैं और किस तरीके से कम्युनिटी कनेक्ट के माध्यम से शारदा विश्वविद्यालय को वो आगे लेकर जा रहे हैं और क्या वो कर रहे हैं, प्लीज मैम।
2: जो हमारे ऑनरेबल चांसलर सर हैं श्री पी के गुप्ता जी, उनका विजन है, उनका इसी बात पर ज़्यादातर जोर रहता है कि यूनिवर्सिटी का असली काम सिर्फ नॉलेज देना नहीं है बल्कि सोसाइटी के बीच जाकर उसका पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन करना है। उनका मानना है कि हर स्टूडेंट एक चेंज मेकर हो सकता है, बस उसे एक मौके की और सही दिशा की ज़रूरत है। उसके अलावा उनका ये भी मानना है कि जैसे मैंने बताया जेन जी, राइट, तो जेन जी के जो जो हैं, ये जनरेशन है, ये स्टूडेंट्स हैं आज, इनको ये समझ में आना चाहिए कि जो हमारे अंडर प्रिविलेज लोग हैं, हाउ डू दे सर्वाइव इन सच अ मीगर सैलरी, इतना कम पैसे में वो कैसे अपनी फैमिली को कैसे वो सर्वाइव कर पाते हैं। वो चाहते हैं कि वो हमारा हर बच्चे को इस विषय में पता हो कि सर्वाइवल कितने कम में हो सकता है।
0: क्या बात है, इस बात को अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो उस विजन को हमारे वीसी सर मिशन बनाकर, हमारी टीम मिशन बनाकर आगे
2: बिल्कुल, हाँ,
0: सही बात कह दी,
2: बिल्कुल सही।
0: हंसते रहिए, आप भी मुस्कुराते रहिए, मेरे भी चेहरे पर हंसी आ गई कि आपने मेरी बात का समर्थन कर दिया। तो दोस्तों लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए, ना टेंशन लेने की जरूरत। लोग कहते हैं कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, लेकिन मैं कहता हूं कि ना टेंशन लेने की जरूरत, ना टेंशन देने की आवश्यकता, क्योंकि अगर आप किसी को टेंशन देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं ताना ना बुन रहा होगा, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और जो मेरे साथ मेरे जो खास गेस्ट जुड़े रहे, मैं आप सबका बारी बारी दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। मेरे साथ जुड़ी रहीं, आप जुड़ी रहीं शिवानी फाउंडेशन की फाउंडर और एडवाइजर कम्युनिटी कनेक्ट शारदा विश्वविद्यालय से, डॉक्टर बर्नाली खरा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई मैम।
1: थैंक यू गगन जी, थैंक यू। सुनो सरदा 90.8 FM जो सुन रहा है, सबको मेरा धन्यवाद, सबको मेरा प्रणाम, और सब जुड़ जाइए शिवानी फाउंडेशन से एंड कम्युनिटी कनेक्ट से।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। साथ ही साथ डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम आपका भी धन्यवाद, डॉक्टर निमी अग्रवाल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाह रही मैम, इशारा करेंगे अगर मुझे कुछ कह रहा है, प्लीज मैम।
3: जी, मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगी कि जीवन में बहुत कठिनाइयां आती है, लेकिन सोहन लाल द्विवेदी जी की दो लाइनें मुझे याद आ रही है
0: जी,
3: कि कोशिश करने वालों लहरों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो जिस चीज को, इस जज्बे को लेते हुए हम जीवन की कोई भी कठिनाई हमारे जीवन में आए उसको हम पार कर सकते हैं, और जीवन को जैसे गगन ने कहा, एंजॉय करिए, कीप हेल्दी एंड कीप सेफ। थैंक यू
0: मैम। डॉक्टर निमी अग्रवाल मैम, आप भी कुछ कह दें।
2: गगन जी, दी वॉइस ऑफ शारदा यूनिवर्सिटी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं का, और दिल से धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और जरूर दोबारा जल्दी हम मिलेंगे। धन्यवाद।
0: तक के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरू शारदा 90.8 FM। नमस्कार। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: स्मार्ट की सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
1: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
2: हेलो, मैं हूँ डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज़ वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजीली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज़ करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज़ करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे, आईज पे, कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
1: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
0: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाएं।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: माहवारी के दौरान क्या करें और क्या ना करें। माहवारी के दौरान एक ही पैड का लंबे समय तक बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए।
1: आप किसी भी ब्रांड के सैनिटरी पैड का उपयोग कर सकते हैं। माहवारी के समय दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार सैनिटरी पैड को बदलना चाहिए। पैड को ज्यादा गीले होने पर वो फट सकता है, जिससे सैनिटरी पैड में मौजूद हानिकारक रसायन आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
0: याद रखें, माहवारी के दौरान स्वच्छता का महत्व और बढ़ जाता है। गंदे, मलिन, अस्वच्छ हाथों से सैनिटरी पैड बदलने से हेपेटाइटिस बी जैसे वायरस और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।
1: कभी कभी योनि पर पानी का अत्यधिक छिड़काव उसे बैक्टीरिया के संपर्क में ला सकता है। योनि एक ऐसा अंग है जो खुद को स्वयं साफ कर सकता है, इसलिए उसे ऐसे ही छोड़ दें।
0: असुरक्षित यौन संबंध अपने आप में बहुत जोखिम भरा है और ऐसे में रक्त स्राव का मिलना और जोखिम भरा हो जाता है। महामारी के दौरान यदि महिलाएं असुरक्षित यौन संबंध बनाती हैं, तो यौन जनित रोग हेपेटाइटिस बी और HIV का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
1: माहवारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
0: ये खास जानकारी आप सुन रहे थे सुनो शारदा 90.8 FM पर यूनिसेफ के सहयोग से।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM में, यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाए। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। सुनो

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: इस गांव में पहले बहुत लोग रहते थे। एक राजा के प्रकोप से एक ही रात में सबने एक साथ गांव छोड़ दिया, पर एक प्रेम कहानी यहाँ की अमर रह गई और वो है इनकी।
2: ये तो तुम जैसा।
3: हाँ नाया, ये लड़की तो फोटो में तुम जैसी है। कहीं हम दोनों सोलमेट्स तो नहीं है?
2: तुम मुझे राजस्थान घुमाने लाए हो या डराने लाए हो?
3: क्या पता हमारा रिश्ता जन्मों जन्मों पुराना हो, है ना?
2: थत।
3: अरे अरे अनाया, बात तो सुनो मेरी। थैंक यू।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: गगन खोखरी फतेह।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: अरे भैया रामू।
2: हाँ भैया श्यामू।
1: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
2: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है, और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
1: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
2: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
3: तो अभी चलो।
4: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
5: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ, और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी TSS एक दुर्लभ लेकिन जानलेवा स्थिति है जो बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश होने के बाद हानिकारक टॉक्सिन्स के निकालने से होता है। ये अक्सर नव युवतियों में महावारी के दौरान टैंपोन के प्रयोग के कारण भी होता है। हालांकि ये किसी भी उम्र में हो सकता है।
2: ये कुछ विशेष प्रकार के टैंपोन के प्रयोग से बैक्टीरिया के वृद्धि के कारण टॉक्सिन्स के निकलने से होता है।
1: इसके लक्षणों में तेज बुखार, उल्टी, दस्त, मांसपेशियों का दर्द, कमजोरी और चक्कर आना और चकत्ते पड़ना है। ये लक्षण एक साथ आते हैं और समय के साथ बिगड़ते जाते हैं।
2: टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी TSS एक चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि इससे बचाव कैसे किया जाए और इसके क्या लक्षण हैं। सही इलाज से ये ठीक हो जाता है।
1: ये लक्षण दिखने पर फौरन नजदीकी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता या ANM से संपर्क करें।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे जानते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंध से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंध का सेवन कर सकते हैं। शकरगंध एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की, नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की, जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है, कैसे जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
1: भाई और बहनों, इस गाने को आवाज दी है हीर ने, म्यूजिक दिया है हीर और अमन नूर ने, ट्रेडिशनल लिरिक्स अमीर खुसरो। जी हाँ, गाने के बोल है छाप तिलक सब छीनी री मोसे नैना मिला के, फ्रॉम द मूवी गिनी वर्स सनी 2। आई सुनते हैं छाप तिलक ऑल ऑन सुरोशा द

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: अरे सुनीता, कैसी है मुनिया?
2: नमस्ते आशा दीदी, बस ठीक है।
1: साफ सफाई का ध्यान रख रही हो?
2: जी दीदी, जैसा आपने बोला था, हर रविवार साफ सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं। जहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा देखते हैं, तुरंत साफ करते हैं, जैसे पानी का ड्रम, कूलर, फ्रिज की ट्रे
3: और आसपास कहीं भी टायर, नारियल, खाली बर्तन या किसी भी चीज में पानी जमा होने नहीं देते। दीदी
1: बहुत बड़ी

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुन सुन शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें। जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Hi, this is Sharmili Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Hi Priya, tum itni tension mein kyun ho? Aakhir hua kya tumhe?
2: Rohan, ab kya batau? Itne sare course hai, samajh nahi aa raha bachelor's mein admission kahan lu?
1: Acha Priya, ye batao ki tumhe life mein karna kya hai?
2: Mujhe main chahti hu meri awaaz puri duniya mein goonje. मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ. मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ. मैं चाहती हूँ.
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो. तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो.
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा.
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें.
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है.
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं. और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है.
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये field आप ही के लिए है. तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में. यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in.
3: The world is here.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, I'm Ranvijay. You're listening to Suno Sharda at 90.8 FM.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं, और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: नहाने के लिए शावर की जगह हमेशा बाल्टी का उपयोग करें। अगर शावर उपयोग भी कर रहे हैं तो छोटे वाले शावर लगवाएं, जिससे पानी की कम खपत हो। शावर का उपयोग न करके हम 40 से 45 लीटर पानी हर एक मिनट में बचा सकते हैं। फ्लश में भी बहुत अधिक पानी उपयोग होता है, इसलिए ऐसा फ्लश लगवाएं जिसमें पानी का फोर्स कम हो। सुनो शारदा 90.8 FM और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: जन जन का रखें ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जांच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं अरुण विजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थाई होती हैं जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना। विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े। और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे कि ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगे बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। शारदा।

स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान, जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीबी का नामोनिशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। प्रत्येक टीबी के मरीज को उपचार के दौरान सरकार द्वारा 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसके लिए मरीज का एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य सही लाभ कही, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: महावारी के दौरान स्वच्छता का महत्व और बढ़ जाता है। महावारी के दौरान स्वच्छता के लिए आप विविध साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि पैड, टैंपून, महावारी कप या साफ कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: यदि आप पैड का उपयोग करते हैं तो उसको जितना हो सके उतनी बार बदलें। दिन में कम से कम 2 से 3 बार पैड को बदलना चाहिए।
1: महावारी में सबसे अच्छा संभावित विकल्प महावारी कप है, जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है।
2: महावारी कप सैनिटरी पैड और टैंपोन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा खून की मात्रा को एकत्र कर सकते हैं।
1: महावारी कप बैक्टीरिया के संक्रमण के जोखिम को कम करता है।
2: इसका दोबारा प्रयोग भी किया जा सकता है, इसमें खर्च भी कम होता है।
1: महावारी के दौरान साफ कपड़े का भी प्रयोग किया जा सकता है। एक साफ कपड़े को मोड़कर पैंटी में रखें। प्रयोग के बाद उसे साबुन और पानी से अच्छे से साफ करके धूप में सुखाएं।
2: प्रयोग किए गए कपड़े को छूने से पहले हाथों पर दस्तानों या प्लास्टिक की थैली को हाथ में पहन लें।
1: गंदे कपड़े का 1 हिस्सा क्लोरीन और 9 हिस्सा पानी के घोल में कम से कम 20 मिनट तक भिगो कर रखें। अगर क्लोरीन नहीं है तो कम से कम साबुन के पानी में 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दें। पानी में साबुन की सही मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए देख लें कि पानी को घोलने और हिलाने पर उसमें बुलबुले हों।
2: हाथों पर दस्तानों या प्लास्टिक की थैली को हाथ में पहनकर गंदे कपड़े को सामान्य तरीके से साबुन और पानी से साफ करें।
1: साफ किए गए कपड़े को धूप में सुखाएं। बचे हुए साबुन के पानी को फेंकने के लिए गड्ढा खोदकर उसमें डाल दें।
2: अपने हाथों से दस्ताने या पॉलिथीन को निकाल दें और हाथों को पानी और साबुन से अच्छे से धो लें।
1: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट मिलकर के एक स्वास्थ्य जन जागरूकता मुहिम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही लाभ कही, ताकि हमारे जो समुदाय के लोग हैं वो सब जागरूक रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान दें। और आप सभी जानते हैं इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बीमारियां भी होती हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हमें खाने चाहिए, कैसे बचना चाहिए, क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर RK शर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। गर्मी का मौसम है, गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती धूप है, तो किस तरह से लोग अपना इस मौसम में ध्यान रखें?
1: इस मौसम में सबसे पहले ये है कि धूप में काम कम से कम करें, सुबह शाम ज़्यादा करें, धूप में सिर पर कपड़ा रख के चलें, पानी बोतल या साथ में इलेक्ट्रॉल ORS या जो भी चीज़ अवेलेबिलिटी हो, या घर से अपने एक छाछ बेलपत्थर का जूस या जो भी जूस लेकर चल सकते हैं वो लेकर चलें साथ में, ताकि बीच में कहीं उसे पी सकें।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, गर्मी हो या मौसम ख़राब हो, जो काम करने वाले हैं उनको तो अपना काम करना ही है, जाना ही है,
1: काम बहुत ज़रूरी है, काम बिना तो कुछ नहीं है।
0: तो काम पर जो लोग जाते हैं, खास करके जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, तो उनको कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए?
1: उनको यही सिर पर कपड़ा रखें हर समय
0: जी।
1: दूसरा ये कि कम से कम जो है मतलब ऐसे ही समझ लीजिए, देखें बहुत ज़्यादा चिलचिलाती धूप है, 2 घंटे का टाइम, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस समय थोड़ा सा जो है कम काम करें या रेस्ट।
0: और
1: सुबह बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं, शाम को देर तक काम कर सकते हैं, उस समय थोड़ा ठंड रहती है, दोपहरी में जो है सब ज़्यादा परेशानी आती है।
0: तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो काम है उसको, जो मौसम ठंडा ठंडा होता है थोड़ा, तो उसी में निपटा दें, और जो धूप होती है
1: उसमें आराम करें,
0: उसमें आराम
1: भी जगह मिल जाए, लेबर है तो अपना कहीं पेड़ है कुछ है या शेड है, कहीं भी किसी तरह का जगह है उनको वहाँ पर अपना।
0: तो डॉक्टर साहब ये तो बात रही कि धूप से गर्मी से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, अब ये जो मौसम होता है ना बीमारियां भी हो जाती हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती हैं इस मौसम में?
1: खास तौर से जो है आपको एक तो उल्टी दस्त आते हैं, दूसरा बाजार का खाना पीना कहीं खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली तो गला खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, उससे लूज मोशन हो जाते हैं, तो बचाव करें इससे। बाजार का खाना कम से कम खाएं, ना खाएं तो अच्छा है, और यदि बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो बहुत हल्का या कम खाएं।
0: तो जैसे आपने बताया कि दस्त की बीमारी हो जाती है, उल्टी की बीमारियां भी हो जाती हैं,
1: हीट स्ट्रोक हो जाता है, बुखार आ जाता है,
0: बुखार भी आ जाता है, अब बच्चों में जैसे डायरिया भी होता है, तो इसके क्या कुछ कारण हैं?
1: डायरिया का भी एक मेन कारण है धूप में, यदि घर में रहते तो नहीं होता इतना, लेकिन बाहर के आना जाना रखते हैं, औरतें हैं बच्चों को लेकर कहीं रिश्तेदारी में आना जाना कर रही हैं, और धूप में गर्मी में है तो उनको उल्टी दस्त के ज़्यादा चांसेस है।
0: तो जिन बच्चों को मान लीजिए डायरिया हो गया है, कभी ऐसा देखा जाता है उल्टी भी है और उसको
1: लूज मोशन भी है,
0: तो किस तरह से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है?
1: सबसे पहले तो उनको यही है कि थोड़ा सा उसको कोई उल्टी के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि उल्टी जब तक नहीं रुकेगी दस्त वाली दवा भी नहीं पचेगी, तो सबसे पहले उसको उल्टी कंट्रोल करने के लिए लिक्विड आता है उल्टी के रोकने के लिए, उसके बाद ORS का पानी पिलाइए उसको, ORS का लिक्विड भी आता है रेडीमेड बना हुआ, और ORS का जो पैकेट घोल के बना सकते हैं। तीसरा फिर उसको दस्त की दवा दें, कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है, इन्फेक्शन नहीं है पेट में ज़्यादा तो खाली जो है दूध मोशन के लिए कोई टैबलेट वगैरह या लिक्विड नहीं दे सकते।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर दराज में कोई रहते हैं, मान लीजिए रात में ये दिक्कत हो गई, अब वो डॉक्टर साहब के पास जा नहीं सकते उस दौरान, तो उस दौरान वो क्या कुछ उपाय अपना सकते हैं?
1: घरेलू उपाय हैं, नमक चीनी का घोल ले सकते हैं, ORS तो लगभग गाँव आजकल सब जगह मिल जाता है, क्योंकि आशा आंगनबाड़ी के सबके पास में ORS रहता है, तो ORS का पानी तो पिला ही दें कम से कम, यदि और दवा भी नहीं मिलती है कोई, और दवा मिल जाए आप, क्योंकि अब तो स्टोर भी काफ़ी लगभग हर गांव में एक आध कहीं ना कहीं स्टोर है, तो वहाँ से उल्टी की दवा तो ले ही सकते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप ORS की सिफारिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या चीज़ है ORS?
1: ORS एक जीवन रक्षक घोल है
0: जी,
1: और खाली दस्त उल्टी के लिए नहीं है, ये किसी भी हीट स्ट्रोक में गर्मी के समय में, या आपको देख रहे हैं कि हमें थकान भी हो रही है कहीं पर, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तब भी ORS का घोल जो होता है काम।
0: तो कहने का मतलब आपका यही हो गया कि अगर मान लीजिए कोई हमें बीमारी भी नहीं है गर्मी के मौसम वाली,
1: तब भी उसको ले सकते हैं,
0: तब भी हम उसको ले सकते हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है कि भाई हम अपने

0: बाहर का बाजार का खाना कम से कम खाएं, बहुत ही मजबूरी में बाहर का खाना खाएं, घरेलू लिक्विड जरूर लें, मट्ठा हो, कोई मैंगो का जो आजकल जैसे पना बना लेते हैं वो ले लो, बेल पत्थर का जूस ले लो, ORS का पानी ले लो, ये घर से लेके चलें कुछ, और घर से एक बोतल पानी भी लेके चलें उसमें।
1: बिल्कुल डॉक्टर RK शर्मा जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है रेडियो के माध्यम से, और हमारे जो सुनने वाले हैं, समुदाय के लोग हैं, ज़रूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे और जो भी आपने बातें बताई हैं उनको अपने जीवन में अपनाएंगे। हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: मुबारक हो तारा।

0: अरे हमारे यहाँ कचरा तो काम वाली भाई या मम्मी उठाती है, ये अंकल कचरा क्यों उठा रहे
1: हैं? टीचर ने बताया था ना,
2: सभी काम सब लोग कर सकते हैं, पुरुष या महिला।
1: सफाई करना तो हम सभी का काम है। अपा एक मिनट, मैं भी कचरा उठाने में आपकी मदद करूँगी।
3: ठीक है चलो, तो हो जाए कचरा पार्टी।

0: तो फिर हम भी करेंगे कचरा पार्टी।
1: हाँ हाँ, हमें जाने की कोई भी जल्दी नहीं है।
2: बर्थडे पार्टी और घर से जो भी कचरा निकला है उसका सही उपयोग और प्रबंधन करना जरूरी है। तो हो जाए कचरा पार्टी।
1: हो जाए।
3: कचरे का सही उपयोग और प्रबंधन मतलब
2: घर पे, स्कूल में या बाहर सड़क पर कचरा यूं ही नहीं फेंकना। ये कचरा हमारे वातावरण, जमीन, हवा, पानी को प्रदूषित करता है।
1: हाँ, बाहर सड़क पर यहाँ वहाँ कचरा फैलाओ तो कितनी बुरी बदबू आती है।
0: और कचरे के आसपास चूहे, छुछुंदर, मक्खी मच्छर का घर बन जाता है और कीड़े भी लग जाते हैं
4: जो हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए कचरे को हमेशा कूड़ेदान में डालो।
5: रुको तारा, पहले ये देख लो ये कचरा किस तरह का है।
4: कचरा अलग अलग तरह का होता है अब्बा।
5: हाँ तारा, ये देखो कि ये सूखा कचरा है या गीला कचरा।
2: जो आसानी से सड़ जाए वो है गीला कचरा, और जो ना सड़े या कई सालों बाद सड़े वो है सूखा कचरा।
4: ये सड़ सकता है, इसका मतलब ये गीला कचरा है।
5: बहुत अच्छे तरह, हमेशा सोचो कि कचरा दोबारा किस काम आ सकता है।
6: इस गीले कचरे को गमले में डाल के मिट्टी से ढक दें तो कुछ समय के बाद ये गीला कचरा जैविक खाद बन जाता है।
0: तो अंकल, क्या हम बचा हुआ हलवा भी गमले में डाल सकते हैं? ये भी तो गीला कचरा है।
5: नहीं चौधरी, पका हुआ खाना गमले में नहीं डालना, उसे तुम जानवरों को खिला सकते हो।
4: वाह, कचरा भी आएगा तुम्हारा काम। तो ये गया गीले कचरे में।
1: और मेरे पास है सूखा कचरा।
5: वाह वाह वाह वाह, तुम सब समझ गए। तो इस तरह गड़बड़ी सूखे और गीले कचरे को अलग कर लिया। और अब ऐसे कचरे की बात करते हैं जो हजारों साल तक सड़ते नहीं, और कुछ कचरे तो खतरनाक भी होते हैं।
4: हजारों साल तक सड़ते नहीं
0: और खतरनाक भी होते हैं।
5: जैसे प्लास्टिक जो हजारों सालों तक ऐसे ही रहेगा, या फिर टूटा शीशा, ब्लेड वगैरह, अगर इन्हें इस कचरे में मिला दिया और कहीं जानवरों ने खा लिया तो।
4: या फिर कहीं शीशे के टुकड़े काम वाले दीदी या कूड़ा इकट्ठा करने वाले भैया को चुप गए तो।
6: इसलिए कोशिश करो कि ऐसी खतरनाक चीजों को अलग से अखबार में लपेट कर बाजार जाते हुए कपड़े का थैला साथ ले लो, ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करना पड़े।
5: और अगर करना ही पड़ जाए तो उसे बार बार इसी तरह से इस्तेमाल करो, ना कि कूड़े में फेंक दो।
0: वाह, बार बार इस्तेमाल।
1: जैसे इस गिफ्ट रैपिंग पेपर को हम अपनी नोटबुक या किताबों में कवर की तरह चढ़ा सकते हैं।
4: हाँ, आइडिया।
5: अरे ये क्या खुसर खुसर चल रही है।
0: हमने कचरे को दोबारा इस्तेमाल करके अपने वातावरण को बचाया।
7: अरे वाह, इसे तो मैं अपने टेबल पर सजाऊंगा।
3: तो तुम सब कब कर रहे हो कचरा पार्टी? हा?